0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: India believes that endless war.
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
10: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी

0: ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया, कहा हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है ये दिन सिर्फ सराहना करने के एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: कहा मेरी कसम?
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: सुप्रभात, नमस्कारम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और जुड़ चुके हैं सुबह सुबह आरजे आनंद के साथ। यह है आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग और उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के बाद सब लोग जो है आराम से उठ रहे होंगे। बिल्कुल जी, अभी भी आराम से उठना आपको कोई दिक्कत नहीं है और आज भी बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। 8:30 हो गए हैं, 5 सितंबर की सुबह अपने आप में बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। क्यों खास है डेफिनेटली बताऊंगा। आज की सुबह डेफिनेटली थोड़ी सी स्पेशल है और आज का दिन सिर्फ उन लोगों को सलाम करने का नहीं है जो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन लोगों को भी सल्यूट करने का दिन है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। किन की बात कर रहा हूँ जरूर आपको बताऊंगा अभी जब वापस आऊंगा, तो आज के दिन के बारे में ढेर सारी बातचीत करेंगे, लौट कर आएंगे भी जरा सी दिन में। फिलहाल शुरू करते हैं आज का सफरनामा एक खूबसूरत गीत के साथ।
1: ABCDEFGHI
0: कौन पढ़ाता है ये?
1: JKLM
0: याद है?
1: NOPQRSTUVWX
0: YZ
1: I love you ABCDEFGHI।
0: चलिए जी, शुरू हो गया आज का सफर, ये 10 बजे तक आपके साथ चलेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे, प्यारे प्यारे व्हाट्सएप पहुंचा सकते हैं आप इमीडिएटली मुझे, फटाफट से अपने हालचाल भी बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का सफरनामा। वेरी गुड मॉर्निंग,

0: जिद करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, 8:36 हो रहे हैं। अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं आज की सुबह। सैटरडे की मॉर्निंग है, 5 सितंबर की तारीख है। कल भी छुट्टी थी, बहुत सारे लोग आज भी छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग यार, ये अच्छी चीज़ है। बाकी आप लोग रेडियो पे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है, लिखती है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं गायत्री नगर से बात कर रही हूँ और आज हमारी सोसाइटी में हांडी फोड़ मटकी वाला एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, तो आप भी उसमें आमंत्रित हैं। अरे वाह, बिल्कुल पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आमंत्रित किया आज की सुबह, हम आपका दिल से थैंक यू करते हैं। इसी बीच मेरे पास एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? सुबह सुबह आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सुबह सुबह हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप इतनी शिद्दत से सुन रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी बीच एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है रमन जी का, ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी आपका म्यूज़िक और आपके गाने दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, सुनकर सुबह सुबह दिन बन जाता है। अरे वाह, क्या बात है।

गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं हमारे पास मुकेश जी। मुकेश जी मुझे मैसेज करते हैं मिलन बिहार से, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सुबह सुबह आपका प्रोग्राम सुन के बहुत आनंद आता है, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि बहुत सारी जानकारियां आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से हमें मिलती हैं और क्या चल रहा है हमारे आसपास में, सारी गतिविधियां आपके रेडियो के माध्यम से मिल जाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसी बीच हमारे पास मैसेज आया है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल हैं जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और इन्होंने अपना नाम सबसे लास्ट में छुपा दिया है और ये हमारी प्यारी मित्र शिखा। शिखा जी थैंक यू सो मच, मानसरोवर कॉलोनी से मैसेज कर रही है। ये लिखती है आनंद जी आज हमारी सोसाइटी में हांडी फोड़ मटकी का प्रोग्राम है तो आप आमंत्रित हैं, आप जरूर आए, थैंक यू सो मच। अच्छा आज हर जगह

हांडी वाला जो कार्यक्रम है, दही हांडी का जो मटकी फोड़ कार्यक्रम है, वो आज सेलिब्रेट हो रहा है क्या आपके आसपास? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी और भी बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, अलोंग विद दैट एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है। हाय मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके गाने सुन के मन प्रसन्न हो जाता है, एक तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपको गाने सुन के अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। एंड इसी बीच एक संदेश और पहुँचा है, आनंद जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हम रात में जहाँ गए थे वहाँ हमने आपको भी देखा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वहाँ पर देखा, आई एम सो हैप्पी, आपको मुझसे मिलना चाहिए था यार। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल हैं? जय श्री राम। गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मोनू जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मंझोला से, लिखते हैं सर सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, साथ में आप गाने बहुत अच्छे प्ले करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका एफएम मुरादाबाद सुन के आनंद आता है। जी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप इतने प्यारे प्यारे गाने यहाँ पर सुनते हैं और साथ ही साथ बातें भी अच्छी करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ, आप भी उसमें मेरा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक और निकाल देता हूँ आपके लिए, उसके बाद जल्दी से लौट कर आऊँगा तो फिर आपसे और भी ढेर सारी बातचीत करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ट्यून इन रहिए हमारे साथ, ऐसे ही बताते हैं आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास है आज की तारीख में, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वेलकम बैक है, अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, अच्छी बातें आपके साथ चल रही हैं और बहुत सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां आपके लिए, थैंक यू सो मच। और अभी 8:53 हो गए हैं, 8:53 यानी कि 8:53। मौसम थोड़ा सा औसम है ही आज, और ऐसा नहीं है कल तो भाई देखो बारिश हो रही है। रात को जो झमाझम बारिश हुई है ना, मुझे लग रहा था कि भाई जन्माष्टमी के प्रोग्राम्स कैसे होंगे, एंड फाइनली भगवान कृष्ण की कृपा हुई, 9 बजे के समथिंग बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी अच्छे तरीके से। आपकी लोकेशन पे थी या नहीं बंद, आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल आज मौसम क्या कहेगा इस पे बात करते हैं। हेलो जी, कैसे हालचाल? बंदे का नाम आनंद है और बंदा हाजिर हो गया, लेकिन अभी कुछ कड़क अपडेट। अभी करंट टेम्परेचर की बात करूं तो 28 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, यानी कि बारिश होने की संभावना है पूरी पूरी आज। हो सकता है बाहर हो भी रही हो, सीरियसली आई डोंट नो यार, मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन आगे की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री जाएगा, अभी करंट 28 है, और ये लोएस्ट की बात करूं तो 25 डिग्री पहुंच सकता है। 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ह्यूमिडिटी ओके है, एयर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी और कुछ तो मुझे लग नहीं रहा है कि आज के मौसम में कुछ ऐसा होगा, बल वेल आज की सुबह डेफिनेटली जितना मुझे लग रहा है कि बारिश तो डेफिनेटली होगी, जन्माष्टमी के आसपास बारिश तो होती ही है यार। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आज के दिन के बारे में, क्या कुछ स्पेशल है आज 5 सितंबर को, क्या कुछ खास सेलिब्रेट किया जाता है।

आगे बढ़ लेते हैं और आपको फटाफट बताते हैं आज और क्या स्पेशल है। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको बता दूँ, आज का दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हुई हैं आज के दिन, जो आज के दिन को यूनिक बना रही हैं। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन क्या कुछ खास रहा है। तो आपको बता दें, 1798 में आज के दिन फ्रांस में अनिवार्य सानी सेवा कानून प्रभाव आया था, श्रोताओं आज के दिन। और आपको बताते चलें, आज के दिन जो है चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ था 1839 में, एंड आज के दिन ब्रिटिश, फ्रांस एंड रूस के बीच लंदन में समझौता हुआ था, सन 1914 में हुआ, श्रोताओं ये आज के दिन। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन एक और ख़ास चीज़ हुई जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बनाती है। और आज ही के दिन नेल्सन मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे 1991 में, आज ही के दिन श्रोताओं। और इसके अलावा आज का दिन और किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज आपको पता है 5 सितंबर है। और आज का दिन क्यों खास है, ऑफकोर्स ये आप जानते हैं, मैं अभी इस पर डेफिनेटली बात करने वाला हूँ ज़रा सी देर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, आज के दिन जो एक पैरालीट में काफ़ी जाना माना नाम है जिनका जन्म आज हम सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन, अजीत सिंह यादव, 1993 में इनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलें, आज के दिन एक क्रिकेटर का भी जन्म हुआ था, भारतीय क्रिकेटर है, 1986 में प्रज्ञान, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड आपको बताते चलें, अमित एक बहुत ही खूबसूरत नाम है जिनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, कौन है ये इनके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ी सी देर में। इसके अलावा 1888 में सर्व पल्लव राधाकृष्ण जी जो हैं, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका भी जो है आज उनको याद किया जाता है। और आज का दिन ऑफकोर्स आप जानते हैं 5 सितंबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, स्पेशली जो लोग स्कूल में जाते हैं ना, उन स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल है। हाँ जी, आज का दिन आज टीचर्स डे मनाया जाता है, आप सभी को पता है, बहुत ही खूबसूरत दिवस शिक्षक डे मनाया जाता है, टीचर्स डे मतलब मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगर मैं आपसे पूछूं आपके स्कूल टाइम में आपका फेवरेट टीचर कौन रहा है, और वो वाला टीचर जिससे सबको डर लगता है, भाई हर स्कूल में हर क्लास में एक ना एक टीचर ऐसे होते हैं जिनसे हर किसी को डर लगता है, तो आपकी लाइफ में कौन से वो टीचर जिससे आपको बहुत डर लगता है, या फिर कौन से वो टीचर थे जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, आपने क्या कुछ स्पेशल दिया है अपने स्कूल टाइम में, ये भी आप शेयर करिएगा मेरे साथ। थोड़ी नॉस्टैल्जिया बात तो होनी चाहिए ना, आज टीचर्स डे हम मना रहे हैं तो थोड़ी नॉस्टैल्जिया वाइब तो होनी चाहिए। डॉक्टर सर्व पल्लव राधाकृष्ण जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 5 सितंबर सन 1888 को, श्रोता हूँ। और मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बताना, आज टीचर्स डे है तो आप टीचर्स डे पे क्या स्पेशल करते थे अपने स्कूल टाइम में, डेफिनेटली बताइएगा प्लीज आप मुझे। और आपको बताते चले, रंगीन टेलीविजन की नींव, भारत में 5 सितंबर 1970 को रंगीन टेलीविजन प्रसारण की तकनीकी नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे आज ही के दिन। तो ये फटाफट से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है क्या कुछ खास रहा है आज के दिन। आज है टीचर्स डे, इस पर हम बात कर रहे हैं, आपके स्कूल टाइम में कौन से आपके फेवरेट टीचर रहे हैं, या वो टीचर जिनसे आपको बहुत डर लगता था, डेफिनेटली डू शेयर विद मी 9837896896, जो भी आपको लगता है कि यार आनंद मेरे को मैथ के टीचर से बहुत डर लगता था, मेरे को इंग्लिश के टीचर से बहुत डर लगता था, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे भी बहुत सारे मेरे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कुछ टीचर्स थे जिनसे सच में यार मुझे भी डर लगता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं मेरे तो एक बहुत ही ऐसे टीचर थे जिनसे मुझे बहुत डर लगता था, वो कौन से टीचर थे और वो सब्जेक्ट मेरे को आज तक समझ में नहीं आता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैं उसमें थोड़ा सा कमजोर हूँ, बताऊंगा थोड़ी देर में लौट कर आऊंगा। तो यार हम लोग फैमिली, वी आर फैमिली, एक दूसरे से क्या ही शर्माना, डेफिनेटली बता सकते हैं यार हम, है ना। तो थोड़ी नॉस्टैल्जिया वाइब होनी चाहिए, आप मुझे फटाक से इमीडिएटली मैसेज करो, आज टीचर्स डे पे कुछ कहना चाहते हो, किसी टीचर को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो बताओ मुझे जरा व्हाट्सएप करके, आपकी लाइफ में कौन है आपका गुरु, कौन है आपका टीचर है जो आपको अच्छी गाइड करता है, ये भी आप मुझे बताओ। एंड अभी मैं आपको 3 ऑप्शन भी देने वाला हूँ लौट कर आऊंगा। तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें भी तो हमारे बहुत सारे टीचर्स आ गए यार। जब जब सावन बरसे रे, ये गाना, उसके बाद वी कम बैक।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
8: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
9: क्या मेरी कसम
8: मिस कर दिया तो रीलोड।
10: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग, सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
11: सुबह के 9:05 हो गए हैं और देखो यार समय बहुत तेजी से भागता है ना, पता ही नहीं चलता है बॉस। ऐसा लगता है अभी तो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, इतनी जल्दी टाइम कैसे भाग गया यार पता ही नहीं चल रहा है। और वैसे ही अभी मेरे साथ भी हो रहा है, और कभी कभी ना अक्सर ऐसा होता है कि आप जो सोच के आते हो ना वो तो होता ही नहीं है बॉस, उसके अपोजिट उसके हो जाता है। वेलकम बैक, ये 9:06 5 सितंबर की सुबह, आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करता हूँ जो अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और आप सभी का भी दिल से थैंक यू यार। आप लोग भी बहुत सारी हेल्प करते हो मुझे, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देते हो, बहुत सारी सही सही इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी तो मेरा मार्गदर्शन करते हो, आप भी तो टीचर हो गए ना रियल लाइफ में, तो आपको भी थैंक यू बोलना बनता है यार। थैंक यू तो आप मुझे भी बोल सकते हो, हाँ सारी जानकारी जो लेकर आता हूँ। चलिए चलिए, मेरा कोई ऐसा रोल है नहीं वैसे। हाँ क्या कुछ खास चल रहा है? चैट जीपीटी और भी बहुत सारे जेमिनी, गूगल जेमिनी और भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए हुई है ठप, जिसको लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है भाई आसपास के लोगों को। मुरादाबाद में कल कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। स्पेशली जो व्हाइट हाउस में कल शो था वहां पर डीएम साहब मौजूद थे एंड हमारे एसपीसीटी सर मौजूद थे, बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है कल वहां पर सेलिब्रेशन हुआ कृष्ण जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया गया। हम खुद वहां पर आमंत्रित थे, बहुत ही अच्छा लगा कल वहां पर, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था जो हमने देखा, और आसपास के नज़ारे भी हम नोटिस कर रहे थे, चाहे मुरादाबाद का मनोकामना मंदिर हो या अपने प्रकाश नगर का माता मंदिर हो, राधा कृष्ण मंदिर हो, और भी बहुत सारे मंदिर थे खूबसूरती के साथ सजाए गए, और भव्य कार्यक्रम भी चल रहे थे कल बहुत खूबसूरती के साथ, जो है कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी का जो उत्सव है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। और आज ये हांडी उत्सव भी सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। आपके यहाँ क्या स्पेशल चल रहा है बताओ मुझे जरा, मैसेज करो 9837896896 पर, आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हैं आज की सुबह मैसेज करके। एंड फिलहाल अभी कुछ अच्छे गाने आने वाले हैं, उनको सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और भी बहुत सारे मैसेज तो मेरे पास पहुंच ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास रमन का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप, सुबह सुबह आपका शो सुन के बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह थैंक यू सो मच यार, मुझे भी अच्छा लगता है आप सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हर किसी का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है इतनी सुंदर बातें सुन के यार, सच में ना दिन तो आप लोग भी बना ही देते हो यार।

एक ऐसी फिल्म जिसमें सलमान खान लव गुरु का रोल प्ले करते हैं और ये मूवी ने कमाल मचा दिया था, एकदम माचो टाइप मूवी थी यार। साथ में सलमान खान ने भी बढ़िया रोल प्ले किया था लव गुरु का, नो डाउट। क्या एडवाइस देते थे बॉस, जरा सी तुम्हें इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टारिंग माय सलमान, गोविंदा, कैटरीना कैफ एंड लारा दत्ता। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो से लाइव आनंद है, यहाँ पर आपके साथ ढेर सारी बातें कर रहा है और अच्छे अच्छे गाने भी प्ले कर रहा है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस।

0: रावण यहाँ पर पहुंच गया।
1: रावण मूवी का ये ट्रैक था, करीना एंड शाहरुख के ऊपर पिक्चराइजेशन। बहुत ही पॉपुलर रहा है गाना अपने टाइम में, बहुत लोगों ने इस पे परफॉर्मेंस दी है। एंड ऑफकोर्स अगर आपने भी नाच लिया है तो बहुत अच्छी बात है इस गाने पे। अभी आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफ एम मुरादाबाद 89.6, बातें होती हैं दिल से दिल तक। 9:17 हो गए। पे राइमिंग बनाता हूँ, जब कभी बाहर से एसी में बैठता हूँ तो मुझे हल्का सा लगता है खतरा, घड़ी में देखो हो गए हैं 9:17। वाह, व्हाट अ राइमिंग। ये गंदी क्रिएटिविटी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यार।
2: एफएम मुरादाबाद 89.6
1: एफएम। जी, एक काम करते हैं, अभी छोटे से कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, छोटे छोटे, उनके बाद जल्दी से मैं वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं

0: मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: वेलकम बैक है जी वंस अगेन, चलिए स्वागत करते हैं। बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन मैसेज के लिए। भैया बहुत ज्यादा बुआबाजी मत करो, हमें पता है आज के दिन बहुत सारे लोग बुआबाजी इसलिए भी करते हैं कि सबको लगता है कि हाँ भाई अपना टाइम है, फेस्टिवल टाइम है तो अपना टाइम है। देखो फेस्टिवल टाइम है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम फेस्टिवल टाइम पे उड़दंग मचाए, है ना, ये नहीं करना है। कोई भी चीज को जितना हम अच्छे से आराम से मनाएंगे उतना ही बढ़िया होगा यार। देखो भैया चीनी के बाद जो है बताया जा रहा है कि अभी एक चीज और है जो महंगी हो गई है, और एक तो पहले ही लोग बहुत ज्यादा तंग थे इन चीजों से, अब ऊपर से ये चीज भी महंगी हो रही है तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हाँ जी, आम आदमी के लिए देखिए महंगी चीनी की मार पहले बहुत जो है लोगों को परेशान कर रही थी, अब घर में बिजली की फिटिंग के लिए अगर आप वायरिंग करवाएंगे तो भैया ये भी आपको महंगी पड़ी। हाँ जी, देश के दिग्गज वायर जो भैया ये होता है ना, वायर मतलब केबल जो तार होते हैं, बिजली के तार, हाँ हिंदी में बता रहा हूँ आपको, बिजली के तार जो है थोड़े से महंगे हो गए हैं भाई साहब। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप बिजली की फिटिंग वटिंग करा अपने घर में तो थोड़ा सा तार वार का चेक कर लेना बॉस, क्योंकि थोड़ा सा बताया जा रहा है कि इस समय में जो है तारों को थोड़ा सा जो है करंट लग गया है, मतलब थोड़े से महंगे हो गए। हाँ जी, ग्लोबल मार्केट में आपको बता दूं कॉपर की जो तारें हैं वो तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी महंगी हुई गई है, बाकी तारों में भी थोड़े रेट बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये बिजली के तार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैंने आपको पहले बता दिया बॉस। एक और चीज आपको बताते चलूं, चैट जीपीटी जेमिनी और भी कुछ ऐप हैं जो दुनिया भर में ठप हो गई थी भैया, जिससे यूजर्स को बड़ी परेशानी हुई थी। आपको तो पता है ना हर दुनिया का जो हर इंसान है आजकल वो एआई पर कहीं ना कहीं निर्भर होता जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एआई का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, है ना। कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, बट छोटे छोटे फॉर्म में सब यूज कर रहे हैं एआई पर जो है। बढ़ती दुनिया की निर्भरता के बीच कल रात को अचानक से जो है इनकी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी रुकावट आई, थोड़ी सी परेशानी बढ़ी। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और भी ऐसे कुछ ऐप थे जहां पर हल्की सी जो है प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी सब ठीक हो गई। अगर आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिए, कोई इशू नहीं है जी। आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है जिसपे हम आपसे ढेर सारी बात कर रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंच चुके हैं टीचर्स डे को लेके। डेफिनेटली आपको बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा काम की बात सुन लो भैया। आधार ऐप से जो है आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब अपडेट कर सकते हो। जी हाँ, कैसे, अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करके अपने नंबर वगैरह को अपडेट कर सकते हो घर बैठे, बहुत ही आसान है। प्ले स्टोर पर जाके आप इनकी नई आधार ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लो एंड उसके बाद सारी सिस्टम्स को अलाउ कर दो एंड आप जो है इसे डाउनलोड करने के बाद अपनी पसंद की लैंग्वेज डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करो। ठीक है जी, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, ऐप खोलकर अपनी फेवरेट लैंग्वेज को शॉर्टलिस्ट करो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है उसे आप शॉर्टलिस्ट करो। नंबर टू पे आपको अपने 12 अंकों का जो आधार नंबर है पाजी उसको वहां पर जाके दर्ज करना है, मतलब उसमें से जो है आपने अपना पिन सेट करना है ना, 6 डिजिट का पिन भी आप सेट करो और वो आपका स्पेशल कोड है उसको आपने भूलना नहीं है। और अपना मोबाइल नंबर आप जरूर डेफिनेटली वहां पर रजिस्टर करें, बाकी जो नंबर आपको एक्सचेंज करना है वो जाके भी आप वहां पर कर सकते हैं। ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन आता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसमें भैया अकाउंट में जो है आपको इसमें पे करना पड़ेगा, मतलब आपको 75 रुपीज देने पड़ेंगे सिर्फ। 75 रुपए में जो है आप अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो भैया, तो आधार कार्ड के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं आपको भी पता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल टाइम है, दशहरा दिवाली आने वाली है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हो गया है। हाँ जी, स्पेशल ट्रेन अगर आप अपने घर पर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप जरूर सुनते जाना ये इन्फॉर्मेशन। फिर बाद में नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अभी आपको बताया फेस्टिवल्स का समय जो है स्टार्ट हो गया है, ऐसे में अभी गणपति आने वाले, कल हमने जन्माष्टमी मनाई है, आज दही हांडी का फेस्टिवल है, उसके अलावा आगे भी और बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इसीलिए जो है अपना आप खास ख्याल रखें। अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो तो आप एक चीज कर सकते हो, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत ईजी आपके लिए लेकर आया हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पर मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल, एक बहुत ही कमाल की टिप्स भी लेकर आया हूं आज। कभी कभी ज्यादा ही हो जाता है मेरा, है ना, बोलना छोटा सा चाहता हूँ लेकिन ज्यादा बोल जाता हूँ, बट कोई बात नहीं, काम की बातें जब हो रही होती है ना तो फिर क्या ही ज्यादा। हाँ चलो जी, आज की सुबह बहुत ही प्यारी है, आज के दिन की देता हूँ आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज है सितंबर की 5 तारीख, सैटरडे की सुबह है, फेस्टिवल जोन से लोग बाहर नहीं निकले हैं, कोई बात नहीं, आप सेलिब्रेट करते रहिए। और मुझे जरा बताओ, मैंने आज की सुबह आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कौन से टीचर से जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था अपने स्कूल टाइम में। मेरे जो टीचर थे, मेरे वो मैथ के टीचर थे, भाई मुझे मैथ से बड़ा डर लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी भी मेरी मैथ बड़ी खराब वाली मैथ है, मेरी बड़ी गंदी मैथ है यार, समझ ही नहीं आई आज तक, घुसी नहीं दिमाग में मैथ मेरी। अगर आप मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है तो मेक श्योर आउट यार। आपको कौन से टीचर से डर लगता था जरूर बताओ मुझे मैसेज करके 9837 8968 96 पर।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
3: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

खूबसूरत सॉन्ग यार, रब ने बना दी जोड़ी का ये ट्रैक, अभी आप एंजॉय कर रहे हैं सुखविंदर सिंह की आवाज एंड सच अमेजिंग ट्रैक यार, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना। सैटरडे मॉर्निंग में आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट यार। आज कितने लोगों की छुट्टी है जरूर बताइए मुझे मैसेज करके, और अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से आपके मैसेज को शामिल करता हूँ। ये गाना कंप्लीट होगा, एक छोटा सा एड ब्रेक, उसके बाद मेरी एंट्री आपके नाम के साथ।

0: दुआ लगती है
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
5: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
4: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
6: मैंने कहा था ना छोटे से एडब्रेक, उसके बाद हमारी एंट्री वापस होगी, तो देखिए जी आ गए हम वापस। Once again, welcome back. You are listening to FM Moradabad 89.6। बाजी बंदे का नाम आनंद है और इतने सारे मैसेज के लिए थैंक यू। बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ यार अभी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी का दिल से थैंक यू करते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो ये प्यार बनाए रखते हो ना, इसको ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टाइम में ना बहुत सारे हमारे टीचर्स बन गए, जैसे हमारे ChatGPT हमारा टीचर हो गया, यूट्यूब हमारा टीचर हो गया। भाई मैं तो कह रहा हूँ आजकल गूगल बाबा को भी लोग कम नहीं है भैया। गूगल बाबा को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते थे, लेकिन अभी भी लोग देते हैं, आई नो दैट, बट अभी जो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, वो ChatGPT को आती है। हर इंसान के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यू हैव टू गो ChatGPT, है ना। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको वहां जाना चाहिए, है? बट क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आपको ही बताएगी, आपके सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप गूगल पे भी जा सकते हो एंड आप YouTube पे जा सकते। हालांकि YouTube पे तो देखो यार एकदम से कोई भी चीज का आंसर नहीं मिलता है, बिकॉज इतने सारे वीडियोज आ जाते हैं, सो मेनी वीडियो एंड सो कंफ्यूजन यार, कि पता नहीं कौन सा वाला सही होगा कौन सा वाला नहीं होगा, ये बहुत भसड़ मच जाती है। करेक्ट, बट अभी क्या है कि हमारी लाइफ में जो टीचर होते हैं ना, जो हमारे स्कूल वाले टीचर होते हैं, अगर उनकी बात करूं तो वो एक अलग ही होते हैं। वो सिर्फ शिक्षा नहीं देते हैं, वो हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने का काम भी करते हैं। अगर आज आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं या अगर मैं अपनी लाइफ में कहीं पहुंचा हूं, तो शायद उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी की, तो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के पहले टीचर, जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, है ना। उसके बाद

दूसरे टीचर हमारे स्कूल वाले होते हैं, फिर कॉलेज, फिर हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरी लाइफ के टीचर हो यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझ तक पहुंचाते हो। जैसे हमारे पास मयंक जी ने मैसेज किया है कि आनंद जी आज कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, हम कहीं पहुंचना चाहते हैं और हम पहुंच रहे हैं। अरे वाह, चलिए आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं पहुंचिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं ये भी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे बढ़ते हैं और अभी आपको कुछ काम की बातें फटाफट से बता देता हूं, क्योंकि काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूं।

थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि आजकल जो है ना भैया स्पेशल ट्रेन को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है अभी अगेन फेस्टिवल टाइम आ गया है, तो ऐसे में जो है सारे लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, जाना चाहते हैं अपने अपने घरों को, तो ऐसे में जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों पर जो है रेलवे यूपी कई शहरों से होकर जो है दिल्ली चंडीगढ़ फिरोजपुर के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है, और ये ट्रेन साप्ताहिक होंगी। अक्टूबर और नवम्बर के दौरान चलने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को त्योहार के मौके पर अपनों के बीच जाने के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो अभी जैसे ही कड़क अपडेट आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कुछ ट्रेन है जो डेफिनेटली चलाई जाएंगी। आने वाला गाना जुबिन नौटियाल की ब्यूटीफुल आवाजों में आप एंजॉय करेंगे, कुछ और आवाजें इसी गाने में आप सुन सकते हैं, आपको अगर समझ में आएंगी तो आप जरूर फील कर पाएंगे।

चलो जी, इस गाने के बाद मैं जब लौट कर आऊंगा ना अभी, तो आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा। जो मैंने कहा था ना, एक छोटी सी टिप मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही कमाल की टिप है। तो वो क्या है मैं जरूर बताऊंगा आपको, और आप मुझे मैसेज करके बताओ जरा। आपकी लाइफ के टीचर के बारे में पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप इनमें से किसे अपना फर्स्ट टीचर मानते हो, चैट जीपीटी, गूगल या यूट्यूब? आपके नाम पढ़ने की बात करी थी ना मैंने, तो मैं जल्दी से आता हूँ फिर आपका नाम पढ़ूंगा।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
7: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में, शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: क्या बात है, दगाबाजी तो भैया आजकल लोग भी कर लेते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन चलिए, वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: चलिए भैया नाचते रहिए और एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, जरा ये बताइए कौन सा गाना है। मैसेज करके आपको बताना है मुझे 9837896896 पे व्हाट्सएप करना है। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। ये जो गाना प्ले हो रहा है अभी आपके रेडियो सेट पर, ये कौन सा गाना है? चलिए मुझे मैसेज करिएगा आप 9837896896 पर व्हाट्सएप करके बताइएगा अभी आपने जो गाना सुना है वो। आज का मेरा कड़क सवाल है, कौन सा गाना है, व्हाट्सएप करके बताना है। फटाफट मैसेज करो, घड़ी मिला लो, 9:53 हो गए हैं।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
5: तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
6: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
5: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
5: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
6: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
9: चलिए भैया नाचते रहिए, आगे भी नाचिएगा। 10:04 हो गए हैं अभी फिलहाल, मैं यहाँ से जाने के लूंगा आपसे इजाजत। लेकिन आज आपके यहाँ पर वो एक बड़ी सी हांडी, जो कहते हैं ना मटकी सजाई आती है, उसके अंदर दही मक्खन कुछ पैसे वो भरकर फिर उसको टांगा जाता है ऊंचाई पे, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, चढ़ते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं। भाई आपने किया है क्या वाला फंडा फॉलो, बताइए जरूर। और अगर आज आपके आसपास में हो रही है तो भी आप बताना, कहीं कहीं पर तो रात में ही मटकी सज गई होगी, मुझे पता है वो गली मोहल्लों के चौराहों पर जो है अक्सर लगाई जाती है। और इस गाने में अगर आप देखोगे तो यही दिखाया गया है, सलमान खान रानी मुखर्जी के ऊपर ये गाना है
10: चांदी।

चलो फिलहाल अभी हम ताक झाक नहीं करेंगे, हमने आपसे पूछा था बड़ा सिंपल सवाल, ये कौन सा गाना है आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास सही जवाब यहाँ पर पहुंचा था नोनेश कुमार जी का, गुड मॉर्निंग आनंद जी, और ये जवाब है तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। थैंक यू सो मच भाई, कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है सबसे पहले। और आज की सुबह हम आपको बनाते हैं अपने प्रोग्राम का सुपर स्टार, आपके लिए जोरदार तालियां एक बार यहाँ पर हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बात के साथ हम लेंगे अब आपसे जाने की अनुमति। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे राम गोपाल गुप्ता बुद्धि बिहार से, इन्होंने भी सही जवाब दिया था। हरे कृष्णा आपको भी सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है जी। ये साबरीन हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में अलका वर्मा बुद्धि बिहार से हमें मैसेज करते हैं, ये लिखती है कल मैं भी व्हाइट हाउस गई थी लेकिन हमें आप नजर नहीं आई मैम। दुर्गेश जी जुड़े हैं, साथ में लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपको भी सर गुड मॉर्निंग। ये बबली अंजान, गीता कश्यप और लक्ष्मी भाभी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रिहाना जुड़ चुकी हैं, चौधरी मुमताज आलम, राकेश वर्मा ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ललिता कश्यप नवीन नगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया। विकी सागर जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग, इन्होंने भी हमें बहुत प्यारा संदेश दिया है और साथ में गुलाब का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव टेलर जी नवीन नगर से जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं हेलो आनंद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल हैं आपके, ये जन्माष्टमी की शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदेवली कार्ट रोड मुरादाबाद से। चलिए श्रोताओं 10:07 हो गए हैं, अब हम आपको जल्दी मिलेंगे मंडे की सुबह। अब रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए। आप सभी को एक बार फिर से ये जो खूबसूरत पर्व चल रहे हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, जकास रहिए, अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल

0: यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

गुड वाली मॉर्निंग है. मॉर्निंग मसाला शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं. भैया समय की बात करूं तो 10:18 हो चुके हैं. गुड वाली मॉर्निंग है जी. सत श्री अकाल जी. राम राम. तुसी आई नो कि आप बहुत अच्छे होंगे और कल जन्माष्टमी के मौके पर बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ अपने जन्माष्टमी मनाया.

और भैया हर गली मोहल्ले में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही जज्बा था। और बहुत से व्हाइट हाउस में भी गए थे एंजॉय करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की झांकियां देखने के लिए। मतलब वहां पर एक अलग ही वाइब आ रही थी, वहां की सजावटें भाई देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम कहीं स्पेशल डे में बैठे हैं। और कल का जो दिन था ना, बहुत ही खास, बेहद खास था। और आज की तारीख यानी कि 5 सितंबर, दिन शनिवार, शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शनि देव और हनुमान जी की आराधना की जाती है आज के दिन। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए आज बहुत ही की छुट्टियां भी होंगी और बहुत ऑफिस भी जा रहे होंगे, है ना। और बहुत से कह रहे होंगे कि बस आज तो भैया कहीं घूमने की प्लानिंग बना लेते हैं, है ना। और साथ ही साथ आज गली चौराहे पे भी मटका फोड़, यानी कि मटकी फोड़ेंगे, क्योंकि ये परंपरा है स्टार्टिंग से ही, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मटकी फोड़ का जो रस्म होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें मतलब देखिए बहुतों को चोट भी लगती है, मज़ा तो आता ही आता है। तो बस सेफ के साथ आप इंजॉय करिए और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो जाइए। मॉर्निंग मसाला शो में आपने मैसेज करना है, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है। और साथ ही साथ आज का दिन ना बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है हर टीचर के लिए, हर बच्चे के लिए। आखिरकार ये डेज मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैसेज तो ज़रूर करना पड़ेगा जी, 9837896 पर। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं और उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ, और आप अपना प्यारा प्यारा संदेश हमें भेज सकते हैं। फिलहाल

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
6: கடல் எவ்வளவு பெருசோ

हेलो जी, गर्ड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आर्जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूँ तो 10:28 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 5 सितंबर, और आज का दिन बेहद खास है। अब ये दिन खास इसलिए है क्योंकि आज मनाया जाता है यानी कि टीचर्स डे, और वो भी आज जिनकी जयंती होती है ना भैया, उन्होंने अपना जो डे है वो टीचर्स डे में बोला था सेलिब्रेट करने के लिए। यानी कि उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। जब बहुत से स्टूडेंट ने सोचा कि हम अपने टीचर्स के जन्मदिन मनाते हैं, केक लेकर आते हैं, पार्टी करते हैं, उनके साथ उनसे केक कटवाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने एक ही बात कही थी कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तब से लेकर आज तक 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है उनकी याद में। कहते हैं ना, जिंदगी में सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई होता है तो वो है एक टीचर, क्योंकि टीचर सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमारे सपनों को उड़ान और जिंदगी को सही दिशा भी देते हैं। 5 सितंबर के यानी कि भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक टीचर की कही हुई छोटी सी बात कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो सिर्फ हमें ये नहीं सिखाते कि परीक्षा में कोई पास हो, बल्कि ये सिखाते हैं कि जिंदगी की मुश्किल परीक्षाओं से कैसे खड़े रहें, कैसे उसको पार करें। तो आज उस हर गुरु को दिल से सलाम कीजिए, दिल से शुक्रिया अदा करिए जिसने हमें पढ़ाया, समझाया, डांटा भी, और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान बनाना हमें सिखाया। और आज जितने भी टीचर्स हैं, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि देखिए एक टीचर के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। ज्ञान हमें कितना मिल जाए, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग है, जो आपको शिक्षा मिलती है, वो एक गुरु ही दे पाते हैं। उनके डांट में भी प्यार होता है, और वो अपने लिए नहीं डांटते हैं, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। अगर वो हमारी भलाई के लिए ना डांटे तो सोचिए कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। और पहले के टाइम में पता है, जब टीचर जिस सड़क पर आते थे ना, उस सड़क पर जाते ही नहीं थे हम। नहीं भैया, सामने से टीचर आ रहे, मत जाओ, पता चले कल स्कूल में मिलेंगे तो हमें डांटेंगे, तो उस रास्ते पर जाने छोड़ देते थे। ये देखते थे कि वो जब चले जाएंगे तभी जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम टीचर के साथ फ्रेंकली हो गए, उनसे बात करते हैं। और बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया, बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अपने टीचर्स की कद्र कीजिए, गर्व करिए, क्योंकि उनके वजह से हम आगे बढ़ते हैं मुश्किलों का सामना करते हुए। और आज उनकी शिक्षा दी हुई कि हम यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए। और आज सभी स्कूल्स में ना टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आखिरकार मैं अपनी कहानी भी आपको बताऊंगी टीचर्स डे वाले दिन की, लेकिन उससे पहले आप सभी के जो प्यारे मैसेज है ना, वो भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। चलिए दीना जी, जय श्री राम। गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप, और आप जानकारियां भी बहुत ही अमेजिंग लेकर आती हैं। ओ माय गॉड, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे, राधे राधे जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाए लगता है तेरी मंजिल है। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है, सार्थक कर्म भी जरूरी है, क्योंकि सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चलना भी जरूरी है। बिल्कुल जी, जब तक आप पहली सीढ़ी को क्रॉस नहीं करेंगे, आप आखिरी सीढ़ी तक
नहीं पहुंच पाएंगे। सीढ़ियों आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको पहले सीढ़ी पर कदम जरूर रखना होता है और शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी से की जाती है। कभी हम बहुत से दिमाग ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम अभी काम कर रहे हैं और ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप पहली सीढ़ी क्रॉस नहीं करेंगे, आप आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो शाबरीन मलिक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। रीना जी, जी बोलिए, और ये गाना सुनना चाहते हैं, टूटा हो दिल किसी का। तो बिल्कुल जी, ये गाना हम डेफिनेटली आपके लिए प्ले करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को हम गाना ज़रूर सुनवाएं। और आज आप सभी से एक क्वेश्चन भी है, देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आज उन्हीं का गाना प्ले करूंगी, क्योंकि आपने रिप्लाई ज़रूर देना है कि आपकी अपने टीचर की मतलब तारीफ करनी है, और साथ ही साथ मतलब बचपन में आपने, ऐसा होता है ना कि हम एक टीचर से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इंग्लिश वाली टीचर थी ना, मैं उसे बहुत डरती थी, मतलब बहुत प्यारी थी वो, लेकिन देख के लगता था भैया भाई साहब बड़ी खड़ूस है ये, लेकिन उनके जैसा सॉफ्ट दिल किसी का भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जो खड़ूस होते हैं ना वो बड़े प्यारे होते हैं, वो हमेशा पढ़ाई के लिए डांटते हैं आपको। तो मैं तो अपनी इंग्लिश वाली टीचर से बहुत डरती थी, इनफैक्ट मैं नहीं, हमारी पूरी क्लास डरती थी उससे। हम अपनी क्लास में कम से कम 45 बच्चे थे, गर्ल्स की, गर्ल्स स्कूल था, और एक ऐसा दिन था जिस दिन हमने पूरी क्लास ने पिटाई खाई थी, वो भी ठंड का महीना, जनवरी का महीना, तारीख बात करूँ तो 15 जनवरी, वो तारीख मैं कभी नहीं भूलती। उस दिन ऐसा हुआ कि ग्रामर में मैम ने कुछ दिया था हमें रीड करने के लिए कि इसको अच्छे से समझ के आना, फिर मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूँगी और तुम सबसे सुनूंगी भी, कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं। वो जैसे ही अगले दिन आती है स्कूल में यानी कि क्लास में, तो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है, पहले आराम से बैठती है फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। भाई किसी ने भी कुछ नहीं आंसर नहीं दिया उस दिन, वो उनका जो डंडा था उनका नाम था स्वीट, लेकिन जो लगता था ना वो नानी याद दिला देता था हमें। तो उस दिन पूरी क्लास की हमारी पिटाई हुई थी, चार चार डंडे हर किसी के हाथों पर, हर किसी की हथेली लाल। तो वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन वो अगले दिन हम सभी क्लास अच्छे से पढ़ के भी आए, जो पूछती थी वो बताते गए, और उससे अगले दिन वो हमारे लिए चॉकलेट लेकर आई। तो इंग्लिश वाली टीचर हमारी कमाल की थी, मैं बहुत डरती थी उनसे। तो आप बताइए कि आप अपने टीचर्स ऐसे कौन, इंग्लिश का हिंदी का जो भी हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा डरते थे और उनकी दो तारीफ करनी है आपने, दो लाइनों में, दो शब्द में, फटाफट मैसेज करके बताइए। नंबर है 9823789698 96, क्योंकि आज टीचर्स डे भी है। और क्या आप अपने कॉलेज में टीचर, स्कूल में टीचर बने थे आज के दिन या नहीं बने थे, वो भी आपने बताना है, जल्दी मैसेज करिए। फिलहाल हम गाना प्ले करते हैं, यानी कि गौरव टेलर जी की रिक्वेस्ट पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 10:47 हो चुके हैं और आज यानी कि शनिवार, और तारीख की बात करूँ तो 5 सितंबर। और हम स्कूल की बात कर रहे थे एक्चुअली, है ना। तो 5 सितंबर को हर स्कूल का तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत तो स्कूल में आज बच्चे टीचर्स बनते हैं, बिल्कुल टीचर्स की कॉपी करते हैं। मतलब उनकी जो साड़ी सूट जो भी पहनते हैं उस कलर के आज बच्चे साड़ी सूट पहनते हैं, रेडी होकर जाते हैं, और आज उनको मौका मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मौका मेरे को भी मिला था 12th क्लास में जब मैं थी। तो मुझे ना मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने सोच लिया था कि भैया मुझे मैथ के टीचर बनने हैं, तो मैं आज मैथ ही पढ़ाऊँगी बच्चों को। तो मैंने ये हमेशा नोटिस करती थी अपने टीचर्स को भी कि वो क्लास में आने से पहले जो हमें वो समझाने वाली है, जो पढ़ाने वाली है, उसका अच्छे से प्रिपरेशन करती थी। क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि किस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो टीचर्स को तो बताना पड़ता है। और मुझे लगता है कि टीचर्स जादूगर होते हैं, जो पूछो उसका आंसर दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जब मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी अच्छे से रीड करके अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। और मैंने यानी कि 12th के मैथ में लॉग का फॉर्मूला है, तो उसको वो एक चैप्टर है उसमें साइन थीटा कोज लॉग का फॉर्मूला वाला, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से मैं समझी फॉर्मूले, अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करा। और जो टीचर ने जो चैप्टर नहीं पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया। लेकिन मुझे उस दिन ये नहीं पता था कि मैं बच्चों को जब मैं पढ़ा रही थी अपने स्कूल के गर्ल्स को, तो मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल है और जो मैथ्स की टीचर है, वो विंडो से देख रही थी। हालांकि जब वो देखती तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाती, मेरा ध्यान यानी कि ब्लैक बोर्ड पर था, तो मैं पढ़ा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब प्रार्थना होती है सुबह के टाइम में, भगवान का नाम लेते हैं, उस टाइम मेरा नाम अनाउंस किया गया, और वो भी मेरे प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था। क्योंकि भैया हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, बहुत खड़ूस, दिल के बहुत अच्छे। ऐसा होता था कि जो बच्चे प्रार्थना के टाइम में लेट आते थे ना भाई, उनकी एक थप्पड़ लगते ही बच्चे ना दूर जाके गिरते थे। मेरे को इतना डर लग गया भैया कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, आज तो रीना तू गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए सरप्राइज था। जब मैं आगे गई तो मुझे डेरी मिल्क का चॉकलेट मिला था, बहुत जो बड़ा वाला आता है, और उस टाइम मेरे को शाबाशी मिली थी। एक्चुअल हमें नहीं पता होता कि हम किस फील्ड के लिए अच्छे हैं, किस फील्ड के लिए नहीं अच्छे हैं, हमारे में क्या फीचर है, वो हमारे टीचर, हमारे घर वाले, हमारे बच्चों के अंदर वो झांक लेते हैं। तब उन्होंने बोला कि तुम मैथ्स के टीचर बनो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पूरी रात प्रिपरेशन करी तब मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो जो अपने बचपन के दिन होते हैं ना, और आज की तारीख तो बहुत ही खास है, 5 सितंबर, बहुत याद आते हैं वो दिन। तो आपने भी बताना है अपनी ज़िंदगी के किस्से, जो भी कुछ है आपके साथ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। और वो जो चॉकलेट का रैपर है ना, आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, मैं कभी उसको नहीं फेंकती चॉकलेट। हालांकि मैं खा गई हूँ, लेकिन जो रैपर है उसको अच्छे से वॉश करा मैंने, ताकि उसमें चींटियाँ वगैरह भी ना जाए, वॉश करके, और वो मेरे अलमीरा में ही रखे, मैं कभी नहीं फेंकती उस पर, कभी नहीं। तो वो दिन बहुत अनमोल होते हैं, स्कूल वाले दिन। हम अक्सर बोलते हैं कॉलेज में जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, अलग घर के ड्रेस पहन के जाएंगे, अलग अलग ड्रेसेस पहन के जाएंगे, लेकिन जो स्कूल के बात होते हैं ना, उसके बाद कोई लाइफ ऐसा होता ही नहीं भैया जो आसान हो, आगे मुश्किलें बढ़ती जाती है। कॉलेज जो स्कूल लाइफ है ना, बेस्ट लाइफ है। कोई मुझसे पूछे कि कौन सा लाइफ अच्छा है, तो मैं बोलूँगी स्कूल वाला लाइफ बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम आपको कुछ नहीं पता होता है, बस आपके अंदर बुक्स और आप अपने पढ़ाई में लीन रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती ज़िंदगी में। फिलहाल आप सभी के मैसेज की बात करूँ तो, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। ये मैसेज आता है हमारे पास हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद लाइन पार से, और ये जो गाना बताते हैं प्रेम गीत मूवी से, हम आपका ये गाना डेफिनेटली प्ले करेंगे सर, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। अच्छा
अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बंटी कश्यप मुरादाबाद से, और ये लाइनें लिखते हैं अपने स्कूल के टाइम के, और लिखते हैं, नहीं मैं स्कूल में बिल्कुल भी शरारती नहीं करता था, मेरी हर क्लास में एक ऐसे पेज में सिर्फ वे, अच्छा जो इनकी नोट बनाते थे ये, जो इनकी नोटबुक थी उसके अंदर वेरी गुड ही मिलता था इनको जब ये चेक कराने जाते थे, और टीचर से लेकर प्रिंसिपल सर भी मुझसे पसंद करते थे, और एक बार मैंने एक घंटे के टेस्ट में की कॉपी 20 मिनट में भर दी थी। मेरी टीचर ने खुद अपने बेटों को स्कूल में बुलाया और कहा देखो हमारी क्लास में और स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है सर ये तो, हालांकि हमारे नोटबुक में भी वेरी गुड ही मिलते थे लेकिन हम शरारती थे और अभी भी, अब मतलब अपने अंदर बचपन को ना जगा के रखना चाहिए, शरारती भी थे, अच्छे काम करते थे, डांट भी सुनते थे और पढ़ाई भी करते थे मतलब अपने अंदर जो क्वालिटी हो बोलो। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं मैया मैया। ओके जी, माहिया माहिया गाना सुनना चाहती है, डेफिनेटली हम आपको ये गाना जरूर सुनाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग, जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जॉन रोजिस पलवलील जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं प्रेम गीत से ही। अरे क्या बात है जी, आप और हरिओम जी ने मतलब दोस्ती कर ली है क्या? दोनों ने एक ही मूवी से गाना बताया है और इन्होंने बोला है कि आओ मिल जाए हम। क्या बात है सर, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनाने वाले। फिलहाल तो हरिओम जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं, और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। समय की बात करूँ तो 11:04 हो चुके हैं रेडियो की घड़ी में। और देखिए, आज उनको भी हैप्पी टीचर डे, जो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं। हर शिक्षक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाते हैं, और कुछ सामने कुछ और पीठ पीछे अपने भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। उनको भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमें असली जिंदगी की जो अहमियत है ना, उनसे ही पता चलती है। जो बोलते तो हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुश्किल की परिस्थिति आती है उस टाइम वो हमारे साथ नहीं रहते, तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और जिंदगी में असली सबक हमें वही मिलती है। चलिए, फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। आप सबको हमारी तरफ से शनिवार सुबह की प्यारी प्यारी हेलो गुड वाली मॉर्निंग है जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। साजन मूवी से ये गाना सुनना चाहती है, बहुत प्यार करते हैं तुमको से। अगले मैसेज की बात करूँ तो जय श्री राम रीना जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, रंग तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, आय हाय। और इनके दोस्त हैं बबलू सैनी, सत्य प्रकाश सैनी। अगले मैसेज की बात करूँ तो आरजे रीना सिस्टर जी, हर परिस्थिति हमारे मन को हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, लेकिन उसे ये देखने का नजरिया हमारे हाथ में होता है। उम्मीद बनाए रखिए, अच्छे की तलाश कीजिए, और हर दिन को एक नए संभावना के साथ जिए। राधे राधे, राधे राधे सर। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत काशाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य काशाना लधावली से। चलिए, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, यानी कि अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत गाना, और संजय दत्त

T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा 22 सितंबर 2026 को, और सुबह का टाइमिंग है इसका 9:30 बजे, और साथ ही साथ ये मैच खेला जाएगा पहली बार जापान के, मतलब हमारी टीम इंडिया और जापान एक साथ पहली बार मैदान में उतरने वाले हैं, और 22 सितंबर का नज़ारा ही कुछ और होगा क्योंकि पहली बार जापान के साथ T20 मैच खेला जाएगा। तो अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो डेफिनेटली आप मैच देखिए, क्योंकि देखिए मैच सिर्फ मैच नहीं होता, वो करोड़ों भारतीयों का जो गर्व होता है, खुशी का पल है, वो सीधा उसी तरफ रहता है, और हर किसी के मुख पर, दिल पर एक ही आवाज़ होता है कि हमारी टीम इंडिया की जीत हो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं आप सभी के मैसेज की तरफ। ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं ललिता कश्यप जी, और कहती हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग बिंदास, मॉर्निंग शो नहीं है ये, मॉर्निंग मसाला शो है। ओके, मॉर्निंग मसाला शो, और इनका कहना है कि आपकी आवाज़ और बहुत प्यारी है, और उसके साथ साथ आपकी हंसी और भी प्यारी है। हैप्पी टीचर्स डे सभी को, और ये लाइनें भी लिखती हैं, गुरु दीपक है, गुरु अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं, गिरते हुए कदमों को संभालना सिखाते हैं, किताबों से आगे जिंदगी का ज्ञान देते हैं, इसीलिए तो गुरु को भगवान का रूप कहते हैं। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और इनका कहना है कि मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, कभी मारते नहीं थे। अरे टीचर कभी ऐसे मारते ही नहीं है, वो तो हमारी गलतियों की वजह से हम होमवर्क करके नहीं ले जाते हैं, नहीं बात मानते, तो इसलिए मारते, वरना कोई टीचर नहीं मारते, बहुत प्यारे होते हैं। और इनका कहना है कि जो भी वो काम देते थे मैं सबसे पहले करके दिखाती थी, और जो प्रिंसिपल थे उनकी पोती भी मेरे साथ ही पढ़ती थी, और वो हमेशा हमेशा शाबाशी देते थे, और यही कहते थे कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। और आज भी जब ये उनसे मिलने जाती है तो वो बड़े खुश होते हैं उनसे मिलकर। ये तो है, जब टीचर्स देखते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो बहुत मतलब वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी खुशी ना नेक्स्ट लेवल वाली होती है, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, उनके ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। एक्चुअल हर टीचर की एक ही ख्वाहिश होती है कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, वो आगे बढ़े। वो निस्वार्थ वाला प्यार से देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और आज आगे बढ़े, चलो अच्छी बात है, आप और आगे बढ़ो, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। और कुछ लाइनें और भी लिखती हैं, ये पंजाबी गाना सुनना चाहती है, सेम टाइम एंड सेम जगह। हमें जो अंधेरे से उजालों की ओर ले जाते हैं, जो हर मुश्किल में सही राह दिखाते हैं, उन गुरुओं को दिल से सलाम हमारा, जिनसे रोशन होता है जीवन हमारा। कलम की ताकत तो सपनों को उड़ान देते हैं, गुरु ही है जो हमें हमारी पहचान देते हैं, उनके ज्ञान का कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे, हम जहाँ भी जाएंगे गुरु को याद ही आएगी। बिल्कुल ये तो है, गुरु को हमेशा याद आती है। अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड मॉर्निंग सीमा अंसारी जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहती है, लुट गया। बिल्कुल जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं। कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, आखिर तुम्हें आना पड़ेगा। अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे पास अगला मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। दीना जी, आज प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम है वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने स्कूल का जो टॉपिक रखा है उसे सुनकर पुराने दिन ना याद आ गए, सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया, और आपकी बातें, आपकी बात करने का अंदाज़

आज बेहद अच्छा है और सुनने में भी बहुत प्यारा लगता है। जो मैंने स्कूल का टॉपिक अपना छेड़ा था वो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम को सुनकर बहुत आनंद आ रहा है और मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, और अगर संभव हो तो कार्यक्रम में इसे ज़रूर प्ले कीजिएगा। अरे सर बिल्कुल करेंगे हम, आप सभी के लिए हैं, आप सभी के मैसेज शामिल करने के लिए, गाने प्ले करने के लिए हैं, आप बिंदास रहिए। मुझे बहुत खुशी होगी रीना जी इस तरह आपने शानदार अंदाज में प्रोग्राम करते हुए, एंड आपका ख्याल, आप अपना ख्याल रखिए और ढेरों शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच सर। और ये गाना सुनना चाहते हैं, मूवी का नाम है मीत मेरे मन के, और गाना है चले आओ चले आओ। बिल्कुल जी, हम ये गाना आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। ओके जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
3: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
2: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 11:32 हो चुके हैं और तारीख 5 सितंबर, और आप सभी को वेरी वेरी गुड वाली मॉर्निंग है जी। आई नो बाहर का जो वेदर है भैया, बादलों के साथ साथ, और जैसे कल का वेदर था ना कि सुबह तक तो भाई कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि शाम को मंदिर जाने वाले हैं, झम के बारिश, झमाझम बारिश, भगवान कृष्ण जी का जो कृपा है वो बरसने लगा बहुत तेज तेज। बस फिर यही इंतजार कर रहे थे, अरे यार बारिश बंद हो जाए, भगवान से अपना दर्शन तो हमें करा ही दो, मंदिर बुला ही लो, तो बारिश भी थम गई, यानी कि 8:30 के समथिंग बारिश रुक गई थी। और साथ ही साथ आज भी ऐसा ही होने वाला है, आज और कल मुरादाबाद में बारिश बताई गई है। हालांकि मुरादाबाद के आसपास एरिया में बारिश जमकर हो रही है, और कल संडे को भी बारिश बताया जा रहा है, साथ ही साथ मंडे को भी। और अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 29 डिग्री सेल्सियस, बादलों से घिरा हुआ, हवाएं चलती हुई, उमस वाली गर्मी। भाई सुबह सुबह उठ के मतलब बाहर का नजारा देखने पर ऐसा लग रहा था कि बस अब ठंड की शुरुआत हो गई, यहीं से ठंड की शुरुआत होती है, लेकिन इतना पॉल्यूशन है ना कि ठंड भी भैया दिसंबर में महसूस होता है कि हाँ अब ठंड लग रही है हमें। चलिए फिलहाल, वरना पहले के टाइम में भैया इस टाइम तक तो, और साथ ही साथ नवरात्रों में इतनी ज़्यादा जमकर ठंड पड़ती थी ना, तो हर कोई स्वेटर इस पहनकर ही बाहर जाता था, घूमने के लिए भी, मेला देखने के लिए भी। लेकिन आज के टाइम में मेले में भी चले जाओ तो ऐसा लगता है गर्मी है, क्यों पहन के आ गई ये हम कपड़े, ये मतलब जो भी हम पहनते हैं हल्के फुल्के कॉटन के भी कपड़े ना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें भी। चलिए हमारे पास मैसेज आते हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, दैया दैया दैया रे। अगले मैसेज की बात करूं तो मैम जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सलमान अख्तर जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ बिजनौर से। हेलो गुड मॉर्निंग रीना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, टीचर्स डे के मौके पर एक गाना सुनवा दीजिएगा, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग रहली। अरे सर ये जो गाना है ना, मैं डाफिन ने पहले ही सुन स्टार्टिंग में चलाने वाली थी, आपने तो दिल की बात ही मतलब कैच कर ली सर आपने तो, बहुत अच्छा गाना है, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग रहली, ये गाना मैं आपको डेफिनेटली सुनाऊंगा।

प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। कश्मीर से मिराजुद्दीन जी कनेक्ट हो गए। अगले मैसेज की बात को तो शिशवा दौरा से कनेक्ट होते हैं नए मुल्क अकरम जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है रीना जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं अक्षय पाद जी का, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी आ है। क्या बात है जी, बिल्कुल ये गाना सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक और भी गाने हैं, उनको भी सुनते हैं और उसके साथ कनेक्टर ये शो में आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 11:46 हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है भैया, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों में प्याज का जो रेट है 80 रुपए किलो जाने वाला है, यानी कि पहुंचने वाला है। ओ माय गॉड। और देखिए बरसात का मौसम है तो कूलर और बालकनी में जो भी आपने गमले रखे हैं उसको साफ करते रहे ताकि आप मच्छरों से बचे रहेंगे। शाम होते ही यानी कि फुल स्लीव के कपड़े जरूर पहनिए ताकि बीमारियों से आप बच सकते हैं। बासी खाना खाने से अवॉइड करें, बाहर का ऑयली खाना खाने से अवॉइड होए। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अमित यादव, रितु यादव जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, इनके साथ है शंकर लाल यादव, लाइन पर प्रकाश नगर चौराहे से कनेक्ट होते हैं, टीचर के लिए गाना सुनना चाहते। ओके जी, बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको। अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आते हैं हमारे पास, चेतन जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि प्रत्येक विद्यार्थी और माता पिता और उनके गुरु का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह 3 व्यक्तित्व की आपकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति की तरक्की कर सकता है। जिस व्यक्ति ने या जिस विद्यार्थी ने इन तीनों को अपनाया वो हमेशा अपने जीवन में सफल ही होते हैं और जो अपना नहीं पाते वो जीवन में असफल हो जाते हैं। इसीलिए गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी जिंदगी में और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।

अगले मैसेज की बात करूं तो नेहा फ्रॉम मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। और इनका कहना है कि आपने जो अभी बात करी थी टीचर्स के बारे में, कि जो पहले के टीचर होते थे ना, बहुत प्यारे होते थे। आई नो कि देखने में खड़ूस लगते थे, लेकिन वो अच्छे से पढ़ाते थे भी थे और हमें अपनी जिंदगी के राह भी सिखाते थे। और सच में उनको देखकर बड़ा डर लगता था, लेकिन जब वो पढ़ाते थे, उनसे बातें करते थे ना, तो लगता था यार मैं बिना बदले में डर रहा था इनसे, तो ये तो बड़े प्यारे हैं। जी बिल्कुल यही होता है। चलिए एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे और जो मैसेज रह गए हैं उनको भी शामिल करेंगे और फिर लेंगे यहां से जाने की इजाजत।

0: क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा आप गाना एंजॉय कर रहे हैं अलका याग्निक जी की आवाज में, दैया दैया दैया रे। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, मॉर्निंग मसाला शो में और समय की बात करूं तो 11:46 हो चुके हैं और जो मैसेज रहते हैं उनको शामिल करेंगे और लेंगे यहां से जाने की इजाजत। और फिर मिलने वाले हैं आपको हम 2:03 रिक्वेस्ट शो में। मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? सैटरडे में मॉर्निंग मस्ती शो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं आप, और हमें गाना सुना, इनको गाना सुनना है, देखिए अजी जाने मन। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो हाय गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, रामपुर से समा हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए कैसी हैं? अगले मैसेज की बात करूं तो खेमपाल सैनी कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, माता पिता और गुरु के लिए एक गाना सुनना चाहता हूं, गुरु से बड़ा कोई नहीं, और मैं अपने गुरु के लिए गाना सुनना चाहता हूँ, मेरे जो टीचर का नाम है तेजपाल सिंह। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना सुनाएंगे। विक्की सागर जी कहते हैं बड़ी देर बाद याद आई, नहीं नहीं सर, मेरे लिए जैसे आप है ऐसे ही और श्रोता है, और कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिक्वल से गाने प्ले होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि मैं जिनको जानती हूँ पहले उनका गाना मैं प्ले करूँगी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ, पार्शलिटी मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, सीरीज वाइज गाने प्ले होते हैं और सीरीज वाइज ही गाने प्ले होंगे, तो देर तो देखिए लगता है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है गाना सुनने के लिए, क्योंकि और भी श्रोताओं के गाने होते हैं और इक्वली गाना प्ले होना चाहिए ताकि सबको अच्छा लगे और सभी के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और फिर मिलेंगे हम आपको 2:03 मिलने वाले हैं फरमाइश शो में, ढेर सारी बातें करेंगे, गाना पहले सोच लीजिएगा भैया कि आज कौन सा हमें गाना प्ले करवाना है, ठीक है जी, और बाय बाय, मिलते हैं 3:00, तब तक आप आई नो कि ब्रेकफास्ट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो कर लीजिए क्योंकि टाइम पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और इसी के साथ बाय बाय।
1: गिटार बजाना हमारी समझ में नहीं आती,
2: तो सीख क्यों नहीं लेते
1: हम?
2: और नहीं तो क्या, चलिए तो सोचो, फैक्ट्री शुरू हो जाने के बाद गाँव में कोई तो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए।
1: अरे हाँ, इस बात पर तो हमने सोचा ही नहीं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन ने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 22 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं।

0: बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: देखिए अर्जरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें, उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
0: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
1: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
1: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
0: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलो अप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
0: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना, ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखिए, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR टीवी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिहतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
2: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
1: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
2: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
1: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
2: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
1: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
2: बिल्कुल आरजे खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
1: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
2: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
1: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है। ये कितना खतरनाक है सहित्या जी।
2: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा।
1: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
2: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
2: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
1: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
2: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
1: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्व से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
2: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: लेकिन सेहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
2: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
2: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
2: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
1: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
2: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह सभी किसी ना किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: सिहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
2: देखिए आज खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
2: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था, तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
2: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई, तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की। फिर उनकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
2: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, आठवीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: क्या बात है सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
2: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सिहतिया जी। दोस्तों ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे।

0: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: तो दोस्तों, सेहत सही
0: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
3: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
2: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज

0: ने का मन करने लगता। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तो बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो ये बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें? अभी क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
1: बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख
0: डिजिटल
1: की तरफ पड़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बारी तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों की बातों में ना आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूँगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कई हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहे। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर चार्ज कर ले कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
2: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
2: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
2: रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
2: जी,
1: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
2: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
1: अरे अरे, क्या बात है।
2: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
1: बिल्कुल जी, हाँ जी सर,
2: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
1: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है।
2: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
1: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
2: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थाई रूप से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
1: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
2: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
2: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
1: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
2: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
2: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
2: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो कोर्ट
1: बिल्कुल
2: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल,
2: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल लगा सकती है, अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
2: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा जाने और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं, तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
2: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए, अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताओ तो पता नहीं था।
2: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं उसको स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
2: बहुत बहुत

0: विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश भर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, यानी एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा ऐसा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? तो प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों

0: और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
1: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। @AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
4: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे झारखंड के मुद्दे के ऊपर, तीन बंदर हो गए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र, विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 160,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का
7: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
8: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
7: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
9: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हैं आप मेरे प्यारे श्रोताओं, उम्मीद है बारिश की इन खूबसूरत बूंदों के बीच आप भी बिल्कुल मस्त होंगे। बारिश का मौसम है दोस्तों, कहीं खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है, कहीं अदरक वाली चाय के साथ पकौड़ों की प्लेट सज चुकी है, तो कहीं बच्चे बारिश देखकर बस यही सोच रहे हैं आज स्कूल जाना ना पड़े या बस आज तो छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आती है अपना ख्याल रखने की, क्योंकि मानसून जितना रोमांटिक लगता है ना उतना ही थोड़ा सावधान रहने वाला मौसम भी है। कभी अचानक बारिश, कभी जल भराव, कभी उमस और फिर मच्छरों की अपनी अलग ही मेहमान नवाजी होती है। तो आज की महिला मंच में हम बात करेंगे बिल्कुल आपकी और आपके परिवार की। बात होगी बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे घर के सीनियर सिटीजन का कैसे ख्याल रखें और महिलाएं खुद को सबसे आखिर में रखने की आदत को थोड़ा बदल कर अपने लिए भी वक्त कैसे निकालें, क्योंकि अक्सर घर की महिलाएं सबकी चिंता करती हैं, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, पति ने छाता लिया या नहीं, सास ससुर ने दवा ली या नहीं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहती हैं अरे मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। बस अब महिला मंच में इतना ही कहना है, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। और हाँ, मानसून में सिर्फ अपने घर का ही नहीं अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पानी जमा ना हो, घर के आसपास साफ सफाई रखें और मच्छरों को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने का मौका बिल्कुल भी ना दें। और इस बारिश में प्रकृति के लिए भी एक छोटा सा काम कीजिए, अगर जगह है तो एक पौधा जरूर लगाइए, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाकर छोड़ मत दीजिए, उसे पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसे बड़ा होते हुए देखिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास महिला मंच, क्या और इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है उसे सुनने के लिए आप बने रहिए खुशी के साथ। एंड मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है, जो कि करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, कुछ मजेदार। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
12: हां जी, की हाल चाल है, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महिला मंच शो में कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के बीच। और मेरा नाम आप सभी को पता ही है कि मैं आरजे रीना हूँ खुशी के साथ। मतलब हम दोनों आ जाते हैं महिला मंच शो में आप सभी के लिए कुछ अटपटे चटपटे लेकर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मानसून के बारे में। मानसून के फुहारे भला किसको अच्छी नहीं लगती, आसमान में बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर गिरती बारिश, मौसम अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बारिश के इस सुहाने मौसम के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, खासकर अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर। मानसून में मौसम बदलता रहता है, कभी तेज बारिश, कभी उमस और कभी अचानक धूप। ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या और खान पान का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज महिला मंच में इसी खूबसूरत मौसम की बात करेंगे, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि खुशहाल परिवार की शुरुआत होती है एक स्वस्थ इंसान से, और अक्सर उस स्वस्थ परिवार की जिम्मेदारी घर की महिला अपने कंधों पर उठाती है। इसीलिए आज सबसे पहले खुद का ख्याल रखना, कैसे हम खुद का ख्याल रख सकते हैं बात करेंगे।
11: हाँ रीना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ, पता है आपको, साफ और सुरक्षित पानी की, क्योंकि मानसून में ना पानी का बहुत ज्यादा रोल होता है और बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। पानी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका साफ और सुरक्षित होना। मानसून में पानी दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए पीने के पानी को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। कोशिश करें कि घर में साफ फिल्टर किया हुआ पानी या जरूरत के अनुसार उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल हो। बाहर कहीं जा रहे हों तो अपने पानी की बॉटल साथ रखें। और एक छोटी सी बात, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि पानी से जुड़े बर्तनों की साफ सफाई भी ध्यान रखें। पानी की बोतल, गिलास और फिल्टर को समय समय पर साफ करना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पानी की स्वच्छता पर ध्यान दें। तो बारिश कितनी भी हो, बादल कितने भी घने हो, पानी के मामले में हमारी सावधानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
13: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि पानी से ही जीवन है, जल है तभी जीवन है। और जल को हम साफ सफाई रखेंगे, बल्कि बहुत से ये कहते हैं कि फिल्टर का पानी, जो आरओ का पानी है, वो पी नहीं पाते, तो आप अपने घर पानी बॉईल करके रख सकते हैं, वो ठंडा होने के बाद पी सकते हो, तो फिल्टर से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी के साथ साथ हम खाने का भी ध्यान रखेंगे, बाहर के खाने से थोड़ी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। आज बात आती है उस चीज की जिसे देखकर मानसून में दिल कहता है बस आज तो खा ही लेता हूँ, गर्मा गर्म समोसा, पकौड़े, चाट, गोलगप्पे। बारिश और स्ट्रीट फूड की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तों इस मौसम में बाहर का खुला और लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से बचना बेहतर है। खासकर कटा हुआ फल, खुले में रखी चटनी या ऐसी चीजें जिनकी साफ सफाई को लेकर हमें भरोसा ना हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश में स्वादिष्ट खाना बंद कर दीजिए। घर पर ही गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए, साथ में अदरक वाली चाय, और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद लीजिए। स्वाद भी रहेगा और हाइजीन भी। तो अगली बार बारिश देखकर स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो खुद से पूछिए, मजा 2 घंटे का है या मौसम पूरे मौसम के? फैसला अब आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करते हैं।
11: रीना, पकौड़े की बात की है तो यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि देखो ना बाहर का मौसम कितना सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े, आए हाय हाय, मुझे तो मतलब मेरा दिन तो बन जाएगा भाई। पर ये पकौड़े हमें खिलाएगा कौन, लेकर आएगा ये बताओ आप? आप तो बनाने जाओगी? नहीं, मैं भी नहीं जा सकती हूँ।
13: नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत अवॉइड किया है, मतलब तली हुई चीजें खाने को।
11: अच्छा,
13: अभी मैं हाँ रक्षाबंधन पे भी घर गई थी तो हमारे घर में भैया पकौड़े सकौड़े बनने थे, लेकिन मैंने अपने आत्मा के ऊपर कंट्रोल करा है
11: दिल को संभाले इन्होंने, दिल संभल जा जरा।
13: और मतलब अब तक के सफर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं घर गई हूँ और घर से आई हूँ, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं।
11: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया है रीना। इसके लिए हम आपको एक चॉकलेट देते हैं, ये लीजिए।
13: जल्दी दे दो।
11: तो देखिए, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रैवल करती है एंड इन्होंने कहा है कि इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इतना लंबा सफर तय किया है मुरादाबाद टू हरियाणा, लेकिन मैंने बाहर की एक भी चीज नहीं खाई है, मैं अपने घर से ही बनाकर लेके गई थी अपने लिए फूड।
13: इनफैक्ट मैंने पानी तक नहीं पिया है बाहर का।
11: अरे वाह, कमाल कर दिया, लड़की ने धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो दोस्तों, अब हम करते हैं मानसून का पौष्टिक खान पान। ठीक है, बारिश के मौसम में हमारा खान पान थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। घर के खाने में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ऑयली और हैवी खाना रोज रोज खाने से बचें। कोशिश करें कि ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। अगर सुबह जल्दी आपको काम पर जाना है तो रात में थोड़ा प्लानिंग कर लें। सुबह का नाश्ता स्किप ना करें, पोहा, उपमा, दलिया, बेसन का चीला या घर का साधारण पौष्टिक नाश्ता लीजिए। और हाँ, बारिश के मौसम में पानी पीना कम मत कीजिएगा। कई बार ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है, इसीलिए अपनी वाटर बॉटल को अपने साथ रखना ना भूलिए, उसको अपने साथ हमेशा रखिएगा,
13: एक अपने साथी बनाकर।
11: हाँ, वो बहुत जरूरी, जैसे हमारी साथी हमारे साथ रहती है, देखो कितनी क्यूट बॉटल है हमारी तरह। चलो अभी गाना सुन लेते हैं यार, इतने सारे हमने बारिश की बातें की है, बारिश का गाना भी तो हो जाए।
13: अच्छा, कौन सा गाना सुनोगी तुम?
11: ओ, गाने तो बहुत सारे हैं। एक बारिश का गाना है बहुत ही प्यारा सा, मैं नाचूं आज छम छम छम।
13: ओह चलो, अच्छी बात है, ये गाना
11: थोड़ा सा इस बहाने थोड़ा डांस भी कर लेंगे और हमारे श्रोताओं को भी डांस करने का मौका मिल जाएगा।
13: अरे वो तो ऑलरेडी डांस कर रहे होंगे।
11: नहीं, वो डांस करने के लिए तैयारी रहते हैं कि खुशी जी बस एक बार गाना चला दो। तो चलो अभी लौट कर आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

तो श्रोता, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय है कि नाचू मैं आज छम छम छम। देखिए, छम छम नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बरसात के मौसम में ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ईचिंग शुरू हो जाती है। फिर कुछ नहीं पता, हम बाहर जाते हैं तो पानी इकट्ठा तो हो ही जाता है, तो हमें नहीं पता वो पानी कितना साफ है कितना साफ नहीं है। उससे हमें कीटाणु भी लग जाते हैं हमारे अंदर, और फंगल्स फिर शुरू वहीं से होता है। इसीलिए ज्यादा देर तक गीले कपड़े में, गीले जूतों में बिल्कुल ना रहे। कोशिश करें कि आप घर पहुंचते हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने पहन रखा है उसको चेंज करें। बारिश में सबसे आम परेशानी होती है गीले कपड़े और गीले जूते। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर तो पहन ही लेते हैं, लेकिन

0: समय तक गीले कपड़ों में रहना अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसीलिए जैसे ही घर पहुंचे गीले कपड़े बदले और पैरों को अच्छी तरह सुखाए। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यही आदत अपनानी चाहिए। जूते को भी पूरी तरह सुखा दे। अगर घर में कई लोग बाहर से भी कराते हैं तो एंट्री के पास एक छोटा सा स्पेस रखें जहां अम्ब्रेला, रेनकोट और वेट वाटर फूड व्यवस्थित तरीके से रखे जा सके। इससे घर भी साफ रहेगा और फर्श पर पानी फैलने से फिसलने का खतरा भी कम रहेगा। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट
1: है। हाँ यार, कई बार होते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी आते हैं गीले कपड़ों में, गीले शूज पहनकर, और फिर हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है।
0: और वैसे भी पहले के टाइम में मतलब घरों में इतना फर्श नहीं होता था, मिट्टी का होता था, थोड़ा बहुत सूख भी जाता है थोड़ी देर में। लेकिन जब फर्श पे अगर पानी गिर जाए तो एक तो वो दिखता कम है और उस पे जिसकी पैर पड़ गई भैया वो गिर ही जाता है। तो इसीलिए ये पैर जो था ये पैतरा अपनाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चों का भी खास ख्याल रखें इस बारिश के मौसम में। बारिश शुरू होते ही ना बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। पानी देखकर मन करता है कि बस छपाछप उसमें कूद जाएं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि बच्चे गंदे या जमे हुए पानी में ना खेलें। बाहर से घर लौटने के बाद उनके हाथ पैर अच्छी तरह धुलवाएं। गीले कपड़े और जूते ज्यादा देर तक पहने ना रहने। स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा कपड़े या छोटा टॉवल रखना भी उपयोगी हो सकता है। और बच्चों को प्यार से समझाइए कि बारिश का मजा लेना है लेकिन सेफ्टी के साथ। उन्हें ये भी सिखाइए कि सड़क पर जमा पानी में उतरना या खुले बिजली के तारों के आसपास जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्यों रीना, कई बार छोटे बच्चे इस तरह की गलतियां कर देते हैं ना।
0: खुशी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा तार मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। और बारिश के मौसम में वैसे भी चाहे घर में भी कोई प्लग हो, बच्चे बड़े मतलब मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, वो बार बार फिंगर भी डालते बोर्ड के अंदर, तो उनसे
1: कभी वो वायर छू रहे हैं, कभी वो स्विच को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं गीले हाथों से,
0: और उनको नहीं पता होता है। कुछ तारे भी घर में होते हैं जिसको लापरवाही की वजह से हम छोड़ देते हैं
1: जी,
0: तो उसका भी ध्यान रखें। और बच्चे छत पर जाते हैं, छत पर भी बिजली के तारे होती हैं, तो वो भी मतलब मोस्टली ये है कि बच्चों की देखरेख बहुत जरूरी है बरसात के मौसम में। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बुजुर्गों का ध्यान बिल्कुल। अब आपने सीनियर सिटीजन की बात ही की है तो अब बात हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की। बारिश के मौसम में सीनियर सिटीजन का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। फर्श गीले होने पर फिसलने का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए घर का फ्लोर जितना हो सके सूखा रखें एंड बाथरूम में भी विशेष सावधानी रखें। और अगर घर में बुजुर्ग अकेले चलते हैं तो रास्ते में सामान या पानी जमा ना रहने दें। उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें बार बार झुकना या ऊंचाई पर हाथ ना लगाना पड़े। मौसम के अनुसार हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें और पानी पीने की याद दिलाते रहें। और सबसे जरूरी, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। कभी उनके पास बैठकर चाय पी लीजिए, पुरानी बातें सुन लीजिए। बुजुर्गों को दवा जितनी जरूरत होती है ना, उतना ही अपनापन भी जरूरी होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा लगता है ना जब हम अपने सीनियर सिटीजन के पास बैठते हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं। क्यों रीना, देखो अब आप भी मुझे बता रही थी अपनी दादी जी के बारे में कि मैं जब घर जाती हूँ तो दादी जी के पास ही सोती हूँ।
0: हाँ ये तो है।
1: और उनकी वो चुलबुली सी बातें, वो बड़ी खूबसूरत सी
0: मतलब पता है, मैं बताती हूँ, वहाँ पर ना जीरो नेटवर्क होता है।
1: हाँ।
0: फोन से दूर।
1: हाँ।
0: और उनकी जर्नी, उनकी कहानियां सुनना कि हमारे जमाने में ऐसे होता था,
1: और हमें और इंटरेस्ट आता है। हाँ। कि और बताओ ना दादी जी।
0: हाँ।
1: है ना,
0: हम पूछते रहते हैं, मतलब हमें ना मतलब दिलचस्पी हो जाती है कि हाँ। भाई इस चीज के बारे में जानना है, क्योंकि जो वो चीज हमने नहीं देखी है।
1: नहीं देखी है
0: तो हम उस चीज को बारीकी से सुनना पसंद करते हैं।
1: हाँ, हमें अनुभव मिलता है उन चीजों का कि अच्छा पहले ऐसे भी हुआ करता था। और पहले की लाइफ बहुत सिंपल सिटी थी पहले।
0: हाँ, अरे अब पता है क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन
1: भी है रीना। और आजकल के टाइम में ना लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं।
0: ये बिल्कुल सही कहा है
1: ना, तो इस चीज में ना इंसान की जो रियल खुशी है ना वो भी गायब हो जाती है।
0: और जो इंसान परेशान रहते हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, बात कहाँ से निकलती निकलती भैया कहाँ पहुंच जाएगी पटरी, ना आपको भी नहीं पता चलेगा
1: और टेंशन दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल माइंड ऐसा होता है यार, रिलैक्स, मतलब एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि परेशान भी रहते हैं, डिप्रेस भी रहते हैं, तो ये वाला जो पैतरा है बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का, वो जरूर अपनाइए।
1: कभी उनकी गोद
0: फिर देखिएगा, आपको आप खुद अनुभव करिएगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है।
1: और कभी उनकी गोद में सर रख कर देखना, जब वो प्यार से आपके बालों को सहलाएंगे, है ना, आपके सर दबाएंगे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: हाँ।
0: और देखिए, बरसात के मौसम में ना हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हम अपने घरों में गमले भी बहुत रखते हैं।
1: हाँ, पेड़ पौधे लगाते हैं,
0: तो उनकी इस बरसात के मौसम में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आपके घर में आप कूलर यूज करते हैं तो उसका पानी कोशिश करें कि डेली चेंज करें। और बरसात के मौसम में मुझे नहीं लगता कि पानी पर एसी चलाना जरूरी है, बिना पानी के भी आप चला सकते हैं।
1: चला सकते हैं, एग्जैक्टली राइट। और हाँ रीना, ऐसा भी होता है ना कि मैंने बहुत सारे, मतलब ऐसा काफी जगह देखा है कि टेरेस पे छत पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है ना, पुराना जो कबाड़ होता है उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मच्छर पनप जाते हैं।
0: और इस मौसम में ना डेंगू मलेरिया हैजा वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मच्छरों से बचकर रहिए, क्योंकि मच्छरों की जो बारात है ना वो बरसात आते ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भैया जितना हो सके आप बच कर रहेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बारिश के साथ साथ एक और मेहमान घर में आने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने बताई दी आपको मच्छर, और इसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके पास आते हैं बिनर बिनर करके कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत प्यारा दोस्त हूँ, अगर तुम्हारी मतलब अगर तुम नहीं उठ पाते हो जल्दी तो मैं हूँ ना उठाने के लिए तुम्हें, ये ऐसा वाला दोस्त होता है, लेकिन ये अस्पताल पहुंचा देता है।
1: बाकी दोस्त होटल लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, पर ये मच्छर है जो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, कूलर गमले बाल्टी छत और ऐसी जगहों को चेक करते रहे जहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है। अगर घर के किसी कोने में पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटाइए, खिड़की दरवाजे पर जाली का इस्तेमाल करें और सुरक्षित और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से बचाकर रखें। याद रखिए, मच्छरों से बचाव सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के आसपास की साफ सफाई भी जरूरी होता है, इससे आप सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज तो भैया आपको पता ही, ऐसा इंजेक्शन लगाकर जाते हैं ना जिसका असर 15 दिन तक रहता है,
1: 15 दिन तक रहता है। और मैं कहना चाहती हूँ
0: धीरे धीरे होता है इसका असर।
1: हाँ, मैं कहना चाहती हूँ जी, जब रात को सोते हैं तो उस समय ना फुल स्लीव के कपड़े,
0: हाँ, बाहर निकले मतलब शाम होते फुल स्लीव का कपड़े पहन लीजिए,
1: और सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें, एंड
0: घर के बाहर कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि भैया आज के टाइम में ना बहुत होता है कि मैं इसके घर के तरफ सफाई नहीं करूंगी, बस इधर उधर झाड़ू लगाया वो उसके कोने में, वो उसके कोने में ऐसे ही इकट्ठा कर देते हैं
1: घर की।
0: तो देखिए, आप तो झाड़ू लगा के इधर उधर कर देते हैं, लेकिन बीमारियां भी तो आप सभी के पास आती है ना, तो इसीलिए ऐसा ना करे कि ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, अरे 2 मिनट लगता है, आप ही हटा दीजिए इस कूड़े को।
1: हाँ, अब आपने घर की साफ सफाई की बात छेड़ी है तो मैं बता ही देती हूँ कि घर में मानसून में घर की साफ सफाई का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। नमी ज्यादा होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं और कई जगह डीपनेस हो सकती है, इसीलिए घर को जितना संभव हो वेंटिलेशन रखें। गीले कपड़ों को लंबे समय तक कमरे में ना टांगें, कचरा समय पर बाहर करें और किचन में पानी जमा ना रहने दें। खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें। अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दे तो
0: इनफेक्ट फ्रिज में भी जब खाना रखते हैं ना उसको भी ढककर रखना चाहिए।
1: ओके, फ्रिज में ऐसे ही खाना रख देते हैं?
0: हाँ, बहुत रख देते हैं ना यार, यहाँ कौन मच्छर क्या जाएगा, धूल क्या ही जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं। तो फ्रिज में कभी भी ऐसे
1: खुली
0: खाना नहीं रखना,
1: चीजें ना रखें,
0: मतलब जो भी आप जिस कटोरी में आप सब्जी रखते हैं, चावल रखते हैं, उसके ऊपर प्लेटें मतलब ढककर रखें।
1: ओके, कहने का यही है कि कुल मिलाकर उसको खुला ना छोड़ें, ढककर रखें, और खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को ढककर रखें। जैसे रीना जी ने भी कहा ही है दोस्तों, चाहे फ्रिज हो या किचन हो, अगर कहीं सीलन या फंगल्स दिखाई दें तो उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर साफ रहेगा तो वातावरण भी बेहतर रहेगा और बारिश का मौसम ज्यादा आराम से एंजॉय किया जा सकेगा। तो चलो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, अब एक छोटा सा एड ब्रेक भी लेते हैं, क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तभी लाइफ हो या फिर शो, इंटरेस्ट तभी आता है जब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। हैं।
0: और गाना मैं ऐसे सुनाने वाली हूँ आपको ना, मतलब बरसात के मौसम में आपने ये वाला गाना नहीं सुना तो मतलब कुछ भी नहीं सुना आपने।
1: मतलब बारिश अधूरी है कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मौसम का मजा नहीं ले पाएंगे। सही बात है।
1: चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं। कौन सा गाना जी सुनाने वाली है?
0: बिल्कुल, लेकिन सुनाने से पहले देखिए मौसम, मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो खेतों में फसलें हैं, धान है, उसपे जो दाने हैं ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब धान आना स्टार्ट हो गया।
1: अच्छा।
0: खेतों में हाँ। तो इस टाइम जैसे बारिश होगी तो वो फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो घर में बैठे बैठे के सोच रहे हैं कि भैया मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा वेदर है, लेकिन उस किसान की मेहनत को भी सोचिए जो इतनी मेहनत में भी अपने खेतों में जाता है, फसल उगाता है, और बारिश भी ऐसे टाइम पर होती है ना जो फसलों को खराब कर देती है।
1: और इन्हें ऐसा भी होता है कि जहाँ बारिश की नींद नहीं होती ना वहाँ बारिश होती है, और जहाँ बारिश की नीड होती है वहाँ बारिश आती ही नहीं
0: आती है, क्योंकि इस टाइम फसलें भी उगने शुरू हो गए हैं, धान उगना शुरू हो गया है, और जब बारिश ज्यादा रहेगी तो जो फसल है वो एकदम अजीब तरीके से हो जाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम इस गाने के बाद मिलते हैं आप सभी को।

0: श्रोताओ, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और फिर से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। देखिए, मानसून में सुकून भी जरूरी है। बारिश का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। कभी लगातार बारिश के कारण घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, रूटीन बदल जाता है। ऐसे में अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां शामिल करें, पसंदीदा संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, परिवार के साथ बैठिए या बालकनी में बारिश का आनंद लीजिए। महिलाओं के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वे सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल वेल बिगनिंग का भी ध्यान रखें। हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर रखें जिसमें आपको किसी काम की जल्दबाजी ना हो, बस आप हो और आपकी पसंद की कोई छोटी सी एक्टिविटी, ताकि देखिए आप कभी मन खुश होना चाहिए, क्योंकि बरसात में हर किसी का ध्यान रखते हैं, ऊपर से आप सभी की जो काम है वो दुगना बढ़ जाता है। अभी झाड़ू लगा के निकले थे, अभी पोछा लगाया था, बारिश आ गई तो फिर वाइपर लेके भाग लेते हैं
1: यार, अभी ये तो सही
0: झट से उन्हें कपड़े धो के छत पर सुखा के फिर
1: भाग के जाओ, फिर लेकर के लेकर आओ।
0: तो बारिश जितना हमें सुकून देता है उतना काम बढ़ा भी देता है, क्योंकि जो काम हम कर कर हटते हैं वो दोबारा कहता है भाई करो इस काम को तुम। और इस टाइम में ना कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है बरसात के मौसम में। और साथ ही साथ जो अनाज धोकर खाते हैं, गेहूं धोकर खाते हैं, जिनके घर में अनाज खत्म हो गया उनका क्या हाल होता
1: है? वो एडवांस में रहते हैं, एडवांस चलते हैं रीना, वॉश करके पहले सुखा के रख लेते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है, बारिश के मौसम में अगर किसी को लगातार तेज बुखार, उल्टी, दस्त, बहुत कमजोरी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। हर बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना सही नहीं होता, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और खुद से दवाई लेने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के मामले में विशेष सावधानी रखें। सबसे जरूरी बात, लक्षण ज्यादा हों या हालात बिगड़ने लगें तो मेडिकल हेल्प लेने में जरा भी देरी ना करें। ठीक है श्रोताओं, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं, आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वाली आफ्टरनून है, फरमाइशों में आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आपने क्या करना है कनेक्ट होने के लिए, बस हमें कॉल करना है, नंबर है 9823789896, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आर्जेरीना। और समय की बात करूं तो यानी कि 3:09 हो चुके हैं, और आज की तारीख भी बहुत ही खास, बहुत ही अमेजिंग, यानी कि आज की तारीख 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। और बहुत अच्छा लगा, हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन रखा कि टीचर्स के साथ हम कैसे थे। मतलब टीचर हमारे लिए सब कुछ होते हैं, वो दूसरा भगवान के रूप होते हैं कि हमें वो सच्चाई के मार्ग पर लेके जाती हैं। तो अभी फिलहाल क्या करना है, आपने मुरादाबाद के अलग अलग एरियाज में बारिश तो झमाझम हो ही रही है, तो आपने हमें कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। फिलहाल हम अपने फर्स्ट कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: जी दी, मैं अक्का भिकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी रेडियो लिसनर अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी अफरोज जी, बताइए और सब फैमिली में कैसे हैं?
1: फैमिली में बहुत ही अच्छे हैं भी, आप बताओ आपके परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: हमारे परिवार में भी सब बहुत बढ़िया हैं।
1: अच्छी बात है भैया, बताइए मौसम कैसा हो रहा है वहाँ का?
0: अरे मौसम औसम है, बादल है, बारिश आने की संभावना है लाइन पार में।
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश मतलब अभी अभी हुई बहुत तेज, लेकिन अभी रुक गई है।
0: तो ऐसे रुकने नहीं चाहिए ना, या तो जम के बरसो या बरसो ही ना।
1: हाँ ये तो है, अभी भी ये हाथ तो बस थोड़ी ना है।
0: हाँ क्योंकि उमस हो जाती है ना फिर।
1: हाँ उमस तो हो ही रही है भी सुबह से ही।
0: तो बताओ अफरोज, क्या सुनोगी आज, कौन से गाने सुनना चाहती हो?
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, वो अभी ये इश्क से आया है मेरा शहजादा।
0: ओके, वैसे भी आप फर्स्ट कॉलर बनी हो, तो कैसा लग रहा है आपको?
1: खुशी हो रही है दी, और क्या है ना मतलब आपसे बात करने का बहुत मन था, खुशी दी से इस हफ्ते मेरी बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज आपसे ही बात कर ली जाए।
0: हाँ वैसे भी मैं सैटरडे के ही आती हूँ।
1: हाँ दी, क्योंकि सॉरी दी आपका शो तो हम सुन नहीं पाते क्योंकि उस टाइम पर बहुत काम होता है।
0: हाँ खाना बनाना पड़ जाता है।
1: खाना फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं ना।
0: ये तो है, देखिए घर का बहुत काम होता है, कोई बात नहीं। आप जो भी मेरा मतलब सैटरडे को तो आप सुन ही लेती है ना शो?
1: हाँ बिल्कुल भी अच्छा लगता है क्योंकि हम दोपहर वाला तो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में भी आती हो तो अच्छा लगता है भी।
0: अच्छा आज तो आप कनेक्ट नहीं हुई थी मॉर्निंग में?
1: आज मैं कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि आज मैं घर पे नहीं हूँ ना, कहीं तो आई भी हूँ।
0: अच्छा मुझे लग रहा है कि आप अपने दोस्त के घर गई हुई है।
1: हाँ जी मतलब मैं दरख्ता के घर से आई भी हूँ।
0: ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी दोस्ती ऐसी सलामत रहे। और गाना आपने बहुत ही अच्छा चूज किया है।
1: हाँ जी आज मुझे लगा, मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आज मुझे ये सॉन्ग सुनना है, तो मैं सोच रही थी कि आज रीना जी से बात की जाए और फिर ये सॉन्ग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा।
0: तो आप गुनगुना भी दो थोड़ा सा, आपकी आवाज भी अच्छी है।
1: गुनगुना कर सका हूँ आपको।
0: और क्या, गुनगुनाना बहुत जरूरी है।
1: हाँ ये तो है दी, ठीक है मैं गुनगुना देती हूँ, ज्यादा अच्छा तो नहीं आता है लेकिन हाँ बस थोड़ा बहुत आता है।
0: हाँ थोड़ा बहुत ही गा दीजिए।
1: दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है शादा, हुआ दिए इश्क से आया है मेरा शहजादा।
0: फिलहाल आप बहुत पहुँच गई है शहजादी के पास।
1: नहीं दी उसे आने में तो मतलब अभी टाइम लगेगा।
0: नहीं आप अपनी दोस्त शहजादी मैंने बोला है।
1: हाँ शहजादी के पास तो आ ही गई हूँ।
0: हाँ तो चलिए मैं आपको गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: चाहती हूँ।
0: हाँ जी
1: एक शायरी सुनाना चाहती हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल सुनाओ।
1: कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है गुलाब, कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है गुलाब, बगैर लफ्जों के मोहब्बत की बातें बताता है गुलाब, मुरझा भी जाए तो महक कम नहीं होती उसकी, मुरझा भी जाए तो महक कम नहीं होती उसकी, सच्चे प्यार का एहसास दिलाता है गुलाब, सच्चे प्यार का एहसास दिलाता है गुलाब।
0: मेरे स्टूडियो से गुलाब की खुशबू आने लगी है।
1: दीदी मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए तो गुलाब जरूर लेके आऊंगी।
0: बिल्कुल चलिए फिर हम आपको एक गाना सुनवाएं।
1: नाम देना चाहती हूँ दी।
0: हाँ हाँ
1: साथ में मेरी बेस्टी है लाइबा, नजमा, दरक्षा, राबिया, रुकैया और आसिया और रामपुर से सबनम भी।
0: चलिए इन सभी के साथ आपको एक गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत दिनों के बाद बात हुई है तो बहुत खुशी हो रही है
0: दी। मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद बात होती है वैसे भी मेरी आप सबसे।
1: हाँ दी, क्योंकि आपको तो हम सुन नहीं पाते, तो हम सोचते हैं बस आप आती हो तो आज के दिन तो हम अच्छा लगता है, क्योंकि इस हफ्ते मेरी बात नहीं होती खुशी दी से, तो मैंने सोचा आज आपसे ही बात कर लूँ मैं।
0: लेकिन देखिए रेडियो सुनने के लिए ना समय नहीं चाहिए होता है, क्योंकि समय को रेडियो खुद ही निकलवा लेते हैं।
1: हाँ दी, रेडियो के तो हम बहुत बड़े दीवाने हैं जी, हम बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको ये गाना सुनवा देते, ठीक है?
1: थैंक यू दी, बाय।
0: ओके बाय। चलिए बहुत ही शानदार गाना है, इसको एंजॉय करते हैं, और आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896।

0: मिनट वाली आफ्टरनून है आप सभी को, और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। बादी एक शिष्य आया है मेरा सहजादा। और सच में कुछ गाने इतने शानदार होते हैं ना भैया कि क्या ही कह सकते हैं। यानी कि जो आपने गाना सुना है इसकी खूबसूरती एक अलग ही बयां करती है। अलका याग्निक जी की आवाज़ में जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत गाने पेश किए, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि ये खुद ही जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतने सारे गाने गाए और यही नहीं सुन पाई। और मतलब हम सभी को अपनी गानों के साथ, मधुर आवाज के साथ, गानों से रिलेट, हमारी जिंदगी से रिलेटेड। और कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनने के बाद ये नहीं मन करता कि भैया मत सुनो, रिपीट सुनने का मन करता है। कुछ गाने 3-4 बार 10 बार भी सुन लो तभी आपका मन नहीं भरता। और आप फरमाइशों में अर्जुरीना के साथ है। समय की बात करूँ तो 3:21 हो चुके हैं। आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं देव बात कर रहा हूँ।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: जी हम आरजे देव हैं, मुंबई से।
0: ओके आरजे देव
1: जी,
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया है, मस्त है। और सुन रहे थे कार्यक्रम आज आपका, तो हमने कहा चलिए फोन लगाते हैं और रीना मैडम जी से बात करते हैं आपके कार्यक्रम में।
0: अच्छा अच्छा मुंबई में कौन सा शो करते हैं आप?
1: बस यही आरजे का करते हैं, रेडियो सीएफटी वर्ल्ड आरजे की धड़कन पर।
0: ओके ओके, नहीं शो का नाम क्या है आपका?
1: शो का नाम हमारा व्हाट्सएप फरमाइश चलता है।
0: अच्छा व्हाट्सएप मैसेज।
1: जी जी जी व्हाट्सएप मैसेजेस लेते हैं, व्हाट्सएप दिल की बातें सबकी आती हैं।

0: और आप जो भी एहसास करते आते हैं सब हम आदान प्रदान करते हैं लोगों के बीच में रेडियो के माध्यम के द्वारा, शेरो शायरियाँ होती हैं।
1: तो आप FM मुरादाबाद रेडियो कब से सुन रहे हैं?
0: मुरादाबाद रेडियो तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, हालांकि आनंद जी को भी जानते हैं, आनंद जी से बहुत पहले बात भी हुई थी एक आध बार जब वो मुरादाबाद पर नहीं शो कर रहे थे, उससे पहले की बात हुई है, तो मुरादाबाद से मैं बहुत दिनों से जानता हूँ।
1: ओके
0: और कभी कभी सुनता भी हूँ, जब जब समय मिलता है तो हम सुनता भी हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड है मोबाइल में FM मुरादाबाद।
1: ओके तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: जी आप रीना से ही बोल रही है ना?
1: जी बिल्कुल, मैं रीना ही बोल रही हूँ।
0: जी, कभी खुशी से बात हुई थी, इसके लिए हमने एक बार कंफर्म किया आपसे रीना।
1: मेरी आवाज मैच हो रही है क्या?
0: जी
1: मेरी और खुशी जी की आवाज सेम लगती है क्या?
0: जी एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी अगर आप मतलब जैसे हमेशा कॉल नहीं करते हैं या किसी की आवाज बार बार नहीं सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है रीना जी।
1: कंफ्यूजन हो जाता है।
0: जी जी जिनकी हम आवाज हमेशा सुनते रहते हैं, जैसे कि आज लोग हमारे आवाज को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, जो सुनते हैं डेली, तो ऐसा होता है।
1: जी जी
0: और हमारे साथ जी जी तो और बहुत अच्छा करके अच्छा लग रहा है आपसे रीना जी।
1: थैंक यू।
0: और हमारे साथ है आज शबनम बोपाती जी।
1: तो बताइए आप गाना।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: गाना गाना
2: जी, मैं जिला रामपुर ग्राम घनिया मस्जिद के पास सपना उपाध्याय आपसे मुखातिब हूँ।
1: जी बिल्कुल, बताइए गाना कौन सा बताया था आपने?
0: गाना रहेगा
1: देखिए सर, या तो आप एक ही बोल लीजिए, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होती है लोगों को भी, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना।
2: जी जी जी,
1: पहली बात तो दो कनेक्ट ही नहीं होना चाहिए था।
0: चलिए
2: नहीं, हम तो बात करते हैं।
1: नहीं बात करते वो अलग बात है ना, लेकिन आपको भी पता है मैम कि गाइड क्या है, यानी कि सर आप भी पता है, आप भी आरजे हैं कि एक कॉल पे सिर्फ एक ही लिसनर बात कर सकता है ना।
0: देखिए मुझे ये पता नहीं था कि आपके FM मुरादाबाद पर एक कॉल पर एक ही आरजे की
2: नहीं दो होती है।
1: और मैम किसने बोला आपको होती है?
2: हमने खुशी जी से बहुत दफा बात करी। जी सर बताइए, गाना बताइए।
0: चलिए कोई बात नहीं है रीना जी, क्षमा चाहते हैं। हालांकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा और नहीं है, और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा कभी ये करता नहीं कि एक के साथ एक ही बात करें।
1: हाँ क्योंकि सर आप खुद ही आरजे, आप भी समझते हैं इन बातों को।
0: नहीं हम समझ रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। मैंने रीना जी मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ये अलाउ करता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म पर पूरी फरमाइश में या लाइव हम किसी को भी अलाउ करते हैं, तो हमारा चार्ज ग्राफ अलग है, हम लोगों का शॉट अलग है, और नहीं पता था इसके लिए गलती हो गई।
1: सर नहीं वो कोई बात नहीं है, आप कनेक्ट होइए, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही बोलिए, क्योंकि कंफ्यूजन होती है लोगों को, फिर समझ नहीं आएगा ना।
0: मैं समझ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि ये डबल आरजे का कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं और डबल श्रोताओं का कॉल भी हम ले चुके हैं, तो शायद आपको मैं बोल रहा हूँ ना, सॉरी बोल रहा हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। रिया जी
2: सॉरी नहीं,
0: आप
1: एक मिनट, आप वो गाना बताइए पहले सर मुझे प्लीज। देखिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, खुशी के शो में आप चाहे दो दो लिसनर बात करते, लेकिन मेरे शो में जब मैं शो आती हूँ दो दो लिसनर आप कनेक्ट होंगे तो मैं फोन डिसकनेक्ट कर दूंगी, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं होता है कि आप दो दो लिसनर कनेक्ट हुए। इतनी समझ आप सब में होनी चाहिए कि आप एक टाइम पर एक ही बात करें, क्योंकि ये रेडियो की गाइडलाइन होती है कि हम दो दो लिसनर नहीं कनेक्ट कर सकते। चलिए हालांकि हमने आपके बात पर कनेक्ट करा भी, तो थोड़ा सा उस चीजों को समझना चाहिए, समझना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल हम गाना सुनवाते हैं आपको, और अभी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करके गाना सुन सकते हैं। और आज का जो वेदर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है, और बाहर हल्की हल्की सी फुहारे वाली बारिश भी आ गई है, और साथ ही साथ मुरादाबाद के आसपास एरियाज में भी बारिश की अलग ही रौनक है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब बरसात आती है ना तो उसका अलग ही आनंद आता है।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 3:34 हो चुके हैं और फरमाइशों में आप कॉल कर सकते हैं और अपना गाना सुन सकते हैं। नंबर है 9823789689 पर कॉल करके आप जो भी गाना सुनना चाहे डेफिनेटली हम सुनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कॉल करते हैं तो कोशिश करें कि आप खुद बात करें, कॉन्फ्रेंसिंग पर किसी को भी ना लें, अदरवाइज आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, कहां से कनेक्ट होते हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: जी सर बोलिए, क्या नाम है? गुड आफ्टरनून।
1: जी गुड आफ्टरनून, कहते हैं कि कॉल हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, इसीलिए आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो रीना जी आपकी शान में कबूल हो, मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खे टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: ओके, अभी राइट नो सर, आप कहाँ पर हैं?
1: अभी तो आपके गुड़गांव के अंदर है, मैं गुड़गांव से बात कर रहे हैं आपसे।
0: अच्छा, गुड़गांव का, गुरुग्राम का वेदर बताइए जरा।
1: लेकिन मैम गुड़गांव में पिछले 24 घंटे होने जा रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है हल्की हल्की और काफी सुहाना मौसम हो रहा है मैम गुड़गांव में।
0: तो सर आपने गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का आनंद लिया या नहीं?
1: मैम चाय पकौड़ी का भी आनंद लिया है और साथ में बिरयानी भी खाई है, ऐसी बरसात का मौसम में बहुत मजा आ रहा है मैम। और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और चाय पी रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा।
0: अच्छा, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम आपसे बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे तरीके से हेलो फरमाइश कार्यक्रम पेश करती हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तमाम प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से कॉल आती है, अपने क्षेत्रों से कॉल आती है और तमाम दूर दूर से श्रोताओं की कॉल आती है, वो अपने बारे में बताते हैं ना। मैम ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुरादाबाद भी कोई सुन रहा है।
0: ये तो अच्छी बात है ना सर, क्योंकि देखिए जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है आप अच्छे से एंजॉय करती हैं।
1: अभी मैम आपसे आपको बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है मैम, आप जो इतने अच्छे अच्छे गाने सुनवाती हैं और सताओ से इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं, ये चीज आपकी बहुत पसंद आती है।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: और मैम मैं आपके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके लिए।
0: थैंक यू, बहुत अच्छा था आपका शायरी। और हम गाना बताइए एक बार, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: देखिए मैम जब जिला रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो सोंगे दिल खो गया क्या हो गया, ओ मेरा दिल कहीं से ला दो।
0: कहाँ खो गया सर आपका दिल?
1: दिल तेरी दीवानगी में खो गया है।
0: बारिश वाली दीवानगी में तो नहीं खोया है सर?
1: जी बारिश के मौसम में तो दिल खो जाता है मैम, बारिश के मौसम में तो होता है। दोस्तों से बात करते हैं वो बारह बदलाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं।
1: मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खे टांडे से मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिब परवेज और जितने भी एफएम मुरादाबाद 89.9 सुन रहे हैं सभी के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई, कैसे भूलेंगे हम उन्हें एक पल के लिए, क्योंकि उनकी याद ही मेरे जीने की वजह बन गई।
0: क्या बात है, चलिए हम आपको ये गाना सुन।
1: गुलशन जी जी चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे और जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हेलो फरमाइश मरीना जी आपसे फिर मिलेंगे।
0: जी बिल्कुल, डेफिनेटली मिल ही जाएंगे आप। चलिए चलिए तो हम गाना सुनते हैं बहुत ही शानदार वाला। और समय की बात करूँ तो 3:38 हुए हैं, आप आराम से कॉल करिए, बेधड़क बिंदास होकर कॉल करिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: जी गुड वाली आफ्टरनून है आज रीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:47 हो चुके हैं और बाहर ना बारिश बहुत ही झमाझम की हो रही है, एकदम तगड़े वाली बारिश हो रही है भैया। अगर आप बाहर है तो देखिए, अगर आप बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप छाता रेनकोट लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर इस टाइम मत जाइए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि मॉनसून का महीना है, इसीलिए अपने साथ छाता रेनकोट अपने साथ बाहर लेकर निकले। कुछ नहीं पता किस एरियाज में बारिश हो रही हो, क्योंकि भैया मुरादाबाद में जब आप निकलोगे ना तो किसी कोने में ना कहीं एरियाज में बारिश होने लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि हाँ नहीं हो रही तो कहीं और भी नहीं हो रही होगी, इसीलिए जब भी आप बाहर घर से बाहर निकले छाता रेनकोट अपने साथ रखें। और अभी फिलहाल बाहर बहुत तेज बारिश है। और साथ ही साथ आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में हैं, तो गाड़ी की जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ नहीं, धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि आप पानी से जब भी गुजरते हैं सड़कों से तो जो छींट है वो आपको भी नहीं पता कहाँ जाती है, इसीलिए थोड़ा सेफली गाड़ी चलाएं और हॉर्न थोड़ा कम। और जो स्कूटी चलाते हैं ना उनके लिए खास बात ये है कि जब बरसात का महीना हो तो वे में टंट मारकर गाड़ी नहीं, स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि स्कूटी के जो पहिए होते हैं ना बहुत ही स्लिप वाले पहिए होते हैं, वो कभी भी स्लिप खा जाते हैं, इसीलिए स्कूटी आराम से चलाएं खासकर बरसात के मौसम में। अदरवाइज भैया पता चले वेव के चलाने में कुछ चोट वोट लग गई तो इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। और हेलमेट और सीट बेल्ट तो चाहे बरसात हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे धूप निकली हो, कड़क वाली धूप हो, कड़ाके वाली धूप हो, हेलमेट और सीट बेल्ट तो अपने साथ रखने ही रखने चाहिए। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अमर सिंह ढील, दिलवाली पटार, छबड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं।
0: ओ राजस्थान से बात कर रहे हैं, बताइए सर उधर का वेदर कैसा है?
1: यहाँ का दीदी अभी तो मौसम यहाँ बारिश हो रही है, अभी तो
0: हमारे मुरादाबाद में भी बारिश हो रही है।
1: हाँ बारिश हो रही लगातार, 3 दिन हो गए बारिश हो रही लगातार।
0: सर हमारे यहाँ तो 1 हफ्ता हो गया
1: जी, हमारे तभी 3 दिन से बारिश हुई यहाँ पर, पहली निकल गई थी।
0: कैसा लग रहा है आपको बरसात का मौसम?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ तो।
0: ओके तो बताइए। हाँ जी
1: अपन तो खेती किसानी करते हैं तो अपने तो फायदा ही फायदा है।
0: तो सर अभी खेतों में क्या बो रखा है आपने, क्योंकि धान की जो फली है वो तो आने लग गई है, फिर नुकसान होता है ना?
1: अपने अपने धान नहीं है, अपने मक्का है, मक्का और सोयाबीन।
0: ओ जिनका धान है उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर।
1: हाँ उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, अपने नहीं है धान, अपने लगाया पर कोई नहीं लगाया, मतलब बहुत कम लगाया यहाँ पर।
0: हाँ पर सबके बारे में सोचना चाहिए सर।
1: जी जी सबके बारे में सोचना चाहिए,
0: क्योंकि किसान आप भी है किसान वे भी है
1: ना, सभी किसान है लेकिन बहुत कम लगाते हैं हमारा तरफ धान।
0: अच्छा अच्छा धान बहुत कम लगाते हैं आपके तरफ, वैसे मोस्टली लगाते क्या है खेतों में?
1: जी हमारे तो यहाँ मक्का ही होती है, मक्का सोयाबीन ही होती है ज्यादातर
0: तो सोयाबीन और मक्का भिजवा दीजिए सर कट्टा भर के
1: ना। अभी हाँ भिजवा देंगे आपके तो भिजवाएंगे क्योंकि अब बुटिया लगने लग गई। अच्छा। हमारी तरफ कोई बुटिया बोलते है, बल्डा बोलते है, ऐसे बोलते हैं, मतलब मक्का का मतलब लगता ही नहीं फल जी उसको।
0: भुट्टा स्वीट कॉर्न
1: जी ऐसे बोलते हैं।
0: हाँ चलिए सर हम इंतजार करेंगे कि अब का कि कब आप भिजवाएंगे।
1: कभी कभी आएंगे तो जरूर लाएंगे कभी मुरादाबाद आएंगे तो लाएंगे।
0: ठीक है ठीक है, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ दीदी हमें जानवर पिक्चर का गाना सुनना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगी।
0: मौसम तो बदल ही गया सर।
1: हाँ मौसम तो बदल गए,
0: इंसान नहीं बदलना चाहिए है ना।
1: ठीक है दीदी, मैं कोई दोस्तों का नाम ले लो क्या?
0: अरे बिल्कुल सर लीजिए,
1: जैसे गजराज लोधी हमारे, प्रेम सिंह सिसोदिया, भगवान सिंह परियार, गजराज लोधी, मांगीलाल चंदेल, मांगीलाल डाकर।
0: चलिए इन्हीं के साथ आपको एक गाना हम सुनवाते हैं। ठीक है
1: ठीक है दीदी नमस्कार।
0: ओके नमस्कार। तो चलिए बहुत ही शानदार गाना सुनते हैं, बारिश बाहर बारिश भी आ रही है और ये गाना भी मस्त वाला है, तो इस गाने को सुनेंगे और फिर कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ।

हेलो जी, आफ्टरनून है। शानदार है।

0: पीठ पीछे छुरियां भी भोंकते हैं, थोड़ा उनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जिंदगी का असली चैप्टर वही हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में, हर कोई कहता ना कि बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती आपको, वो तो बॉडी और सेहत आपकी अच्छी बनती है, अकल तो आपको धोखे खाकर आती है। तो इस चीजों को आप खुद समझ सकते हैं कि दोस्त वो होता है जो आपको काम भी कर रहे हैं और लग रहा है भैया गलत है इसके लिए, तो वो आपको टोकेगा समझाएगा, लेकिन वो चीजें हमें बुरी लगती है कि ये मेरा दोस्त होते हुए भी दुश्मन बनता जा रहा है, लेकिन वही अच्छा वाला दोस्त होता है आपका जो नहीं समझाएगा, जिस मतलब जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो क्यों समझाएगा आपको, खुद सोचिए जरा। चलिए फिलहाल मेरी बातें कभी कम नहीं होती, अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी
1: कैसी हैं मैम आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मैम मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपसे मेरी बात करिए तो मैं और भी
0: अच्छी होगी। थैंक यू, कितना फूले समाई हैं आप।
1: जी मैम मुझे बहुत बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच, क्या नाम है जरा आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मैम कहते हैं कि खुद हंसना दूसरों को हंसाना काम है मेरा, खुद हंसना दूसरों को हंसाना काम है मेरा, चांद सितारों पे रहती हूँ इसीलिए तो चमक कर भी नाम है मेरा।
0: तो चांद सितारों को देख लीजिए, हम तोड़ लेंगे एक दिन। तोड़ कर अपने पास ले आएंगे।
1: फिर हम आपके पास आ जाएंगे।
0: हाँ फिर हम आपको तिजोरी में कैद कर लेंगे और जाने नहीं देंगे।
1: मत जाने देना, हम आपके पास रह लेंगे।
0: हाँ यही काम करेंगे है ना
1: जी।
0: हाँ तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: आना मूवी का नाम रहेगा आदमी खिलौना है, गीत के बोल रहेंगे बुलबुल ने भी गुल को पुकारा होगा।
0: ओके आदमी खिलौना है
1: जी।
0: एक्चुअल में आदमी खिलौना ही हो गया आज के टाइम में
1: जी। वाह
0: चलिए
1: दो लाइनें कहना चाहूंगी।
0: बोलिए।
1: आज के रास्ते लिए मैम।
0: ओके बोलिए।
1: मैम कहते हैं कि तुझ जैसा जमीन पे फूल क्या ना आसमां पे सितारा होगा, तुझ जैसा जमीन पे फूल क्या ना आसमां पे सितारा होगा, तुझ जैसा तो दुनिया पे ना कोई दोबारा होगा, और मुंह मोड़ के ना जाना हर ही समझे देंगे ऐसे सदा कि बुलबुल ने भी गुल को ना पुकारा होगा।
0: आए आए आए आए। क्या बात है, मन तो करा रसगुल्ले के पानी में डूब जाऊं। चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके बाय। तो चलिए श्रोता गाना सुनते हैं, बुलबुल ने भी क्या कहा है वो सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
5: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
4: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरिना के साथ। और समय की बात करूँ तो 4 बजकर यानी कि 7 मिनट हो चुके हैं। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है भैया, काले काले बादलों के साथ क्योंकि बाहर का जो बादल है ना, वो काले काले बादल घेर घनघोर बादल घटा घनघोर छाया हुआ है और बरसात आए हाय आए, अलग ही मजा। कल कृष्ण जन्माष्टमी पर भी भैया शाम के टाइम जो जमकर बारिश हुई है ना, आय हाय है। एक टाइम के लिए तो लग रहा था भैया बारिश बंद नहीं होने वाली है, मंदिर ही नहीं जा पाएंगे, लेकिन भगवान जी ने रहम करा और मंदिर भी गए और एंजॉय भी करा। और साथ ही साथ अब आप सभी के साथ कनेक्ट है और बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, आप चाहे गाड़ी में है, चाहे आप घर है, चाहे आप खेत में है, कहीं भी है, रेडियो के वॉल्यूम बढ़ाइए, गाना सुनिए और कॉल करिए। नंबर है 9823789689 पर आप गाना एंजॉय कर सकते हैं फरमाइशों में। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो रीना
0: जी सर,
1: बाबू,
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: कैसे रहे हो? बस आशीर्वाद रहेगा,
0: थैंक यू सर। बताइए और कैसे फैमिली में?
1: रहो।
0: हाँ, बारिश हो रही है, ये तो है सर। तो आपके उधर भी बारिश हो रही है?
1: हो रही बारिश।
0: तो आप अपने बारे में थोड़ा श्रोताओं को बता तो दीजिए।
1: गोल्ड
0: अरे नहीं, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए श्रोताओं को।
1: मैं ओम प्रकाश, रेलवे कॉलोनी और 2007 में रिटायरमेंट हुआ था।
0: ओके
1: आज आज 8 साल का हो गया।
0: अच्छा जी, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना हमने बहुत, हम तो ओल्ड इज गोल्ड वाले गाने सुने। काजल काजल मीना कुमारी थी और राजकुमार था उसमें, धनुष
0: ओके जी, मोहम्मद रफी की आवाज में। हाँ, तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर
1: यू।
0: जी? वेलकम सर। ये तो हम, आपने जो गाना बताया, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गाना हम प्ले ना करें? चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक
0: वेलकम सर। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं।

0: हेलो जी, गर्ज वाली इवनिंग है फरमाइश शो में आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 4:00 यानी कि 14 मिनट हो चुके हैं और बाहर बारिश भी और काले काले बादल घनघोर घटा छाई रे छाई। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कॉल कर लीजिए इस घनघोर घटा में जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, पसंद वाले गाने। आई नो कि भैया कमरे में बैठे हुए हैं, टीवी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मम्मी कह रही है टीवी नहीं देख रहे हैं, काम करो स्कूल का। फिलहाल आप काम नहीं करेंगे तो हमारा रेडियो ही सुन लीजिए, कॉल कर लीजिए हमें। नंबर है 9837896896 पर। फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
0: क्या नाम है आपका?
1: त्याग।
0: त्याग या चिराग?
1: चिराग वर्मा।
0: चिराग वर्मा। अच्छा, क्या करते हो आप?
1: स्कूल में पढ़ाई।
0: कौन से स्कूल क्लास में हो आप?
1: सेकंड।
0: ओ, सेकंड क्लास में हो आप?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो आपको क्या क्या आता है ये बताओ। ये बताओ वीक में कितने डेज होते हैं?
1: क्या कहें?
0: वन वीक में कितने डेज होते हैं? हेलो। अच्छा, 7 होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको मिलते हैं 10 में से कितने नंबर चाहिए?
1: 10 में से 5।
0: अच्छा, 10 में से मैं अगर मैं आपको 15 दे दूं तो? अच्छा, तो ये बताओ आप गाना कौन सा सुनना चाहते हो?
1: छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे गुआ।
0: गुआ या ग्वाल?
1: ग्वाल।
0: अच्छा, तो ये बताओ आप ये गाना क्यों सुनना चाहते हो? जन्माष्टमी तो कल थी। हाँ, जन्माष्टमी कल थी। आपके स्कूल में आज प्रोग्राम हुआ है क्या? तो आप क्या बने थे ये बताओ।
1: कृष्णा।
0: ओह, कृष्णा बने थे। तो आपने तो डांस भी करा होगा। तो मुझे डांस दिखाओगे? ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए गाना प्ले कर दूं। अच्छा, ये बताओ मेरा नाम क्या है, पहले ये बताओ, तब गाना प्ले करूंगी आपका।
1: खुशी दीदी।
0: होए रब्बा, खुशी दीदी। आप तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया आपने।
1: नाम से मिल चुका हूँ।
0: अरे मेरा नाम पूछा है मैंने तो आपसे।
1: रीना दीदी।
0: हो चलो, कोई याद तो आया, पीछे से कोई बोल तो रहा है। चलो हम आपको ये गाना सुनवाते, ठीक है? ओके, बाय
1: बाय।
0: चलिए भैया, बच्चे की रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 4:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। अगर आपकी घड़ी में टाइम अप डाउन है तो आप बता सकते हैं। अप डाउन तभी होती है जब फोन की जो मतलब घड़ी टाइमिंग है ना वो खराब हो जाती है, और घड़ी की टाइम सेल खत्म हो जाती है तब होती है अप डाउन। तो आप मुझे बता सकते हैं, गलती आपकी नहीं हो, घड़ी की गलती होती है। और आप कनेक्ट होके गाना सुन सकते हैं। भैया मौसम बहुत अच्छा है फिलहाल, अगले जो हमारे कॉलर है बहुत इंतजार कर रहे हैं, हेलो हेलो करे जा रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
4: हेलो हेलो रीना मैम को नमस्कार। मेरा
1: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: मेरा नाम शंकरलाल यादव है, लाइन पार्क विकास नंबर 2 से बोल रहा हूँ।
1: नंबर 2 में तो मैं भी हूँ सर
4: जी।
1: बताइए सर क्या करते हैं आप?
4: मैं तो साथ कुछ नहीं करता, मेरी आंखों से नहीं दिखाई देता, मैं तो आपका प्रोग्राम सुबह सुनता हूँ और रात को ना सुनता हूँ आपका प्रोग्राम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
4: जी, मेरी आंखों से नहीं दिखाई देता मैं।
1: इलाज करवाइए सर, ऑपरेशन करवाइए।
4: काम मना कर दिया, ऑपरेशन भी करवा दिया, मेरे नसें जो है कमजोर है आंखों की।
1: अच्छा अच्छा, मेडिटेशन करा करिए सर।
4: मैं क्या करूँ?
1: मेडिटेशन करा करिए
4: जी। अब मैं बैठ हुए पढ़ा रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए आप।
4: अब तो साथ ठीक क्या रहता है, तो जिंदगी खत्म करने की बात है।
1: अरे अरे सर, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
4: कैसा हो या दिल आके टूट जाता है।
1: अच्छा ठीक है,
4: फिल्म का
1: ठीक है सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
4: जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हुई साहब, जो मेरी कॉल ली है।
1: थैंक यू सो मच सर। वो तो सर हमारा काम है कॉल अटेंड करने का। ठीक है सर, बाय, हम आपका गाना सुनवाते हैं।
4: साहब मेरी मतलब कुछ नाम दे सकते
1: हो? क्या
4: नाम दे सकते हो?
1: हाँ हाँ बिल्कुल
4: जी, मेरी 2 लड़की है, एक रंजीता यादव है और उनके 2 बच्चे है, दक्ष यादव है और अर्पिता यादव है, और हमारे दामाद का नाम सतनाम यादव है, और एक का नाम अनुराधा है, रंजीत है, और एक का नाम 2 बच्चे उनके भी, एक सिद्ध यादव है और एक विनायक यादव है।
1: ओके ओके, सभी के साथ आपको हम गाना सुनाते हैं। ठीक है
4: ठीक ठीक साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
1: ओके ओके ओके, चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं। शीशा हो या दिल टूट जाते हैं, टूटने के बाद वो जुड़ता मुश्किल से, तो कोशिश करें कि दिल ना टूटे आपका।

0: गर्ड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। इस समय की बात करूं तो 4:32 हो चुके हैं फरमाइश शो में और मुरादाबाद का टेम्परेचर इस टाइम है 28°C, यानी कि घनघोर घटा के साथ बादल झमझम झमझम बारिश हो रही है, लेकिन चाय पकौड़े आप नहीं भिजवा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भी आए एक जो दिल की बातें दिल तक करते हैं, लेकिन वो दिल की बातें दिल तक आप सभी के साथ करते हैं। फिलहाल तो यहाँ कुछ चाय पकौड़े ले आते तो मैं भी कर लेती।
1: चाय पकौड़े की मैं सोच रहा था, मगर हुआ क्या, मैंने सोचा यार चाय पकौड़े लेने जाऊंगा भीग जाऊंगा।
0: गाड़ी में आए जनाब,
1: तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय पकौड़े चल के रीना के हाथ के ही खाएंगे।
0: पकौड़ी तो मुझे आती नहीं वैसे बनाने। अच्छा, चाय तो बना लेती मैं।
1: रीना वैसे पकौड़ी तुमने कभी ना कभी तो सोची होगी बनाने की, तो क्या क्या आइटम लगता है पकौड़ी बनाने में?
0: पकौड़ी में अरे बेसन तो लगता ही है, ठीक है, साथ ही साथ उसमें नमक मिर्च अदरक
1: अदरक
0: अदरक भी तो डालते होंगे।
1: आप तो जो मन है वो डाल लीजिए, उसमें
0: धनिया डाल लो, हरी मिर्च डाल लो,
1: कस्तूरी मेथी भी डाल लो।
0: हाँ, कस्तूरी मेथी भी डाल लो।
1: हाँ, तो इस बहाने पकौड़ी तो मिल ही जाएगी ना।
0: और मेथी भी डालते हैं।
1: मुझे लग रहा है पकौड़ी खाने के बाद जो पेट में हलचल होगी ना, वो तो या तो रीना जानेगी या वो पकौड़ी खाने वाला।
0: अरे यही तो डलते होंगे।
1: हाँ हाँ, यही डलता है, सब कुछ बढ़िया से, सब अच्छा। आपने आइटम बताएं।
0: और फिर आलू प्याज गोभी।
1: हाँ, जिस चीज की आपको बनानी है पकौड़ी।
0: हाँ,
1: वो तो डलवा।
0: हाँ, वो बनता है। बाकी आपको पता है, अरे मेरी फिरकी मत लो, पकौड़ी मुझे आती नहीं, मुझे, बाकी सब कुछ बना लेती हूं।
1: मुझे मैगी पता है बनानी आती है, मगर आजकल एक वीडियो देखा मैंने, अब से मैगी का ना
0: तुमसे नहीं
1: तुमसे मैं वो भी भूल
0: मेरी
1: गया।
0: भतीजी भी अभी मैं घर गई थी, वो बहुत मैगी खाती थी, कहती लंच में मुझे वही दो, आती स्कूल से मुझे मैगी चाहिए। अब कहती है, मैंने पूछा मैगी खाएगी? नहीं नहीं बुआ, वो कीड़े का बनता है, मैगी नहीं खाऊंगी। भाई लड़की नहीं खाती सर, मतलब उसने वीडियो देख के, और मतलब अभी कितने साल की है वो, 4 साल की है, लेकिन मैगी छोड़ दिया उस लड़की ने।
1: नहीं अच्छा है, मतलब फास्ट फूड से तो जितना लोग बचे हैं वो। हाँ, बेस्ट
0: मैगी, मतलब बच्चों को देखो, मतलब कुछ चीजें देख देख के उनके दिमाग में चीज फिट हो रही है कि नहीं खाना चाहिए,
1: मगर कुछ चीज जो होती है ना वो बच्चे रेसिपी एकदम बच्चों को याद भी है।
0: हाँ, लेकिन वो मोमोज के बड़ी दीवानी है। उसने मतलब घर जब मैं गई कलेश मचा दिए कि मोमोज बनाओ, मेरे लिए मोमोज बनाओ।
1: तो सीख गए मोमोज आप?
0: वो तो मेरे को आती है।
1: आते हैं तो फिर आज खिलाई दीजिए।
0: भाई चूल्हे पे बनते हैं वो।
1: ये भाई साहब अलग ही मोमोज
0: छोटे वाली सिलेंडर, पता चले एक बार में सुन रहा। फिलहाल अगले हमारे तो कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून रीना जी।
0: जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून तो नहीं सर, गुड इवनिंग।
1: कोई नहीं, वहाँ पे अभी वो उनकी तरफ सूरज निकल रहा होगा ना।
0: सूरज तो हमारी तरफ भी निकल रहा है, पर बारिश हो रही है,
1: हमारी तरफ ढक गया है।
0: हाँ जी सर बताइए, क्या नाम है आपका?
2: मैम जी मैं सलमान अख्तर बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी,
2: बिजनौर तहसील नजीबाबाद।
0: ओके सर, बिजनौर से आप है, कब से रेडियो सुन रहे हैं? तीन चार साल
2: जी मैम।
0: ओके तो बताइए सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: जी गाना सुनना है मुझे, जा जा के कहां मिन्नत पर याद करोगे, लोग तुम्हें दिल देते हैं क्या याद करोगे।
0: क्या बात है, लेकिन सर आप ये बताइए, हमारा रेडियो सुनते हैं कैसा लगता है आपको?
2: जी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं और मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, लेकिन लाइव प्रोग्राम में जुड़ता हूँ, मैसेज भी करता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैसेज भी आता है आपका।
2: जी मैम, और मैम प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सभी आरजे अच्छी मेहनत करते हैं प्रोग्राम लेकर जो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: तो मैं 3-4 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन 3-4 बार ही मैंने कॉल की है अभी तक।
0: अच्छा अच्छा, मौका आप कम, मतलब कॉल कम करते हैं आप?
2: जी मैम जी, दूसरों को भी टाइम लगना चाहिए, उनको भी कॉल होनी चाहिए।
0: क्या, क्या बात है, आपकी तरह सोच सबकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा।
1: मगर अगर सभी ऐसे सोचने लगे तो फिर कॉल कौन करेगा?
2: जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं नईम मलिक, उनको भी मैंने नंबर दिया।
0: ओह मतलब कश्मीर से, मतलब आपके दोस्त है वो?
2: जी मैम जी।
0: ओके ओके चलिए, आपके दोस्त
2: हमारे कुछ मित्र है और जो यहाँ मुरादाबाद के है उनके नाम लेना चाहते।
0: जी जी जी
2: जी, फिरोज फातिमा जी है और लाइबा जी है, मुकेश कश्यप जी है और फरमान भाई है, और जी सभी सुनने वाले और आप और आनंद सर।
0: ओके सर, अभी कॉल कॉल मत कट करिएगा, ठीक है?
2: जी मैम,
0: अभी मैं आपको बात करती हूँ आपसे। तो चलिए श्रोताओं, इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं।

0: आफ्टरनून है आरजे रीना के साथ, आफ्टरनून के साथ गुड वाली इवनिंग है जी. कभी कभी होती भी है ट्रेन की पटरी एक्चुअली नहीं होती, कहीं और चली जाती, कहीं और चली जाती.
1: तुमने तो बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया.
0: तो फिलहाल अभी समय की बात करूं तो फरमाइशों में 4:48 हो चुके हैं. और देखिए मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई भी हो, देखिए हम जब किसी को नहीं जानते हैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, खासकर लड़कियों के बारे में. क्योंकि देखिए आप लड़के हैं और एक लड़के की जिंदगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि घर वाले या आस पड़ोस के जो रिश्तेदार है वो क्या सोचेंगे कुछ नहीं पता है. इसीलिए कभी भी जब तक आप किसी को ना जानो, आपकी अच्छी बात नहीं होती हो, तो किसी गर्ल्स का नाम नहीं लेना चाहिए. आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस चीज को समझेंगे कि किसी लड़की का नाम नहीं लेना है जब तक आप नहीं जानते हो.
1: बिल्कुल सही बात कही आपने रीना जी.
0: तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं. हेलो,
2: हाय दी.
0: हाय, क्या नाम है आपका?
2: दी मैं द्राक्षा फादी में बात कर रही हूँ, आप कैसी हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
2: मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम. बारिश हो रही है आपके वहाँ पे?
0: अरे बहुत
1: जमाजम.
0: काले काले घटा बरस रहे हैं.
2: हाँ जी मैम, इतनी बारिश हुई है कि बहुत ऐसे झमाझम बारिश हुई है.
0: लेकिन तुमने पकौड़ी अकेली अकेली खा ली है, मेरे लिए नहीं भेजी है, तुम्हारी जीभ जल जाएगी गरम गरम पकौड़ी.
2: नहीं मैम, आप आ जाएंगे ना तो साथ में खाएंगे ना.
1: सही है,
2: कैसे चलेगी?
0: अरे तो
2: साथ में खाएंगे.
0: अरे तो आप मुझे बुलाने आओगे तभी तो.
2: ओ मैम, बुलाने आऊँ मैं आपको?
0: तो बिना एड्रेस के बताओ मैं कैसे आ जाऊंगी. अंतर्यामी हूँ मैं, अंतर्यामी.
1: इन्हें इन्हें रीना जी को ठेले का एड्रेस बता दो.
0: ठेले तो हमारे ऑफिस से निकलने के बाद ही मिल जाएंगे.
2: नहीं मैम, तो चलो ठीक है, मैं आपको लेने ले जाने आ जाऊंगी, आप तैयार रहें बस.
0: अरे मैं तो आप ले जाएंगे जब भी तैयार हूँ. मैं तो घर के कपड़े नाइट कपड़ों में भी चल दूंगी मैं तो.
2: हाँ मैम, कोई नहीं, आप कैसे भी हालात में हो आपको साथ लेके आएंगे.
0: हाँ और क्या, चाहे मैं सोती भी रहूं कुंभकर्ण की तरह तब भी चल पड़ूंगी आपके साथ नींद में.
1: आपने मान लिया आप कुंभकर्ण हैं?
0: नहीं मैं कुंभकर्ण नहीं हूँ. जब मेरे को ज्यादा नींद आती है फिर कोई बीन भी बजाता रहे मैं उठती नहीं हूँ.
1: कौन सी वाली, बांसुरी वाली?
0: कोई भी हो. बताओ दरक्षा, कौन से गाने सुनोगी आप
2: आज? मैं सॉन्ग सुनूंगी, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली.
0: तो आप बेचैन तो नहीं हो रही हो मुझसे मिलने के?
1: इन्होंने चाय एक कप ज्यादा पी ली है.
2: बेचैन तो है आपसे मिलने के लिए.
0: अच्छा फिर जल्दी आ जाओ, बेचैनी खत्म हो जाएगी ना मिलने से.
2: हाँ मैम, इंशाल्लाह जरूर जल्दी आएंगे आपसे मिलने के लिए
0: जी. किसी का नाम लेना चाहोगी?
2: हाँ जी मैम, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा, और मेरी सिस्टर अफरोज फातिमा, नजमा अप्पी, लाइबा काजमी, आसिया अप्पी, और आप सभी सुनने वाले.
0: चलिए सभी के साथ आपको हम ये गाने सुनवाते हैं, ठीक है?
2: थैंक यू मैम, बाय.
0: ओके बाय. तो चलिए श्रोताओ, अब ये जो गाना है बहुत ही शानदार है, गाना सुनते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी को इस गाने के बाद. वो तो है ही हम आपके गाना प्ले करने के लिए. अब बेधड़क बिंदास रही.

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है अलका याग्निक जी की आवाज में, और साथ ही साथ उदित नारायण जी, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली। फिलहाल अब बेचैन मत होइए क्योंकि ये शो खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉल करने के लिए तो आपके पास टाइम है आज नहीं है, आज का टाइम ये समाप्त होता है। आप कॉल कर सकते हैं यानी कि संडे को, कल रात को कर सकते हैं, और साथ ही साथ मंडे टू यानी कि सैटरडे तो ये शो आता ही है, तो आपको संडे का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी भैया कॉल करने से रह गए हैं, सोच रहे थे भी आज कॉल कर लेते, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका कॉल लग ही जाएगा। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाई
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: साकिर बोल रहा हूँ कॉलोनी से।
0: जी साकिर जी बताइए, सब बढ़िया है?
1: सब बढ़िया है, सुनाइए कैसा हाल है आपके स्टूडियो में?
0: बहुत बढ़िया, हमारे स्टूडियो में भी, और बाहर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी हाल है यहाँ के। हाँ बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: मूवी का नाम है पत्थर के सनम, गीत के बोल है तौबा ये मतवाली का।
0: चलिए सर, नाम लेना चाहेंगे?
1: ना कोई नहीं, अब बस अपने लेना ही
0: है। ठीक है, उन्हीं के लिए है ये तौबा ये मत वाली चाल।
1: जी जी जी
0: ठीक है, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके चलिए श्रोताओ, अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपने झोला वोला ठाके, छतरी वतरी ठाके, मिलेंगे आपको मंडे में यानी कि इवनिंग मस्ती शो में, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय। 5 बज चुके हैं भैया, याद रखिए समय हो चुका है 5 बजे। अगर अभी तक आपने चाय नहीं पिया है तो जरूर पीजिए क्योंकि समय आगे बढ़ चुके हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
0: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिस्नर

0: से जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
1: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने,
0: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
1: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
0: देखिए जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई, मैंने कहा नहीं अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
1: और मुझे लगता है कि सर जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
0: देखिए हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है वो एकदम 10 रुपए में मिलती है तो कस्टमर क्या होता है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर क्या होता है जैसे ये जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
1: उसके फोन में कनेक्ट
0: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी है वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना है। लेकिन आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं तो वहां पर आपको घबराना नहीं है बल्कि धैर्य के साथ समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
0: हाँ रीना बिल्कुल आपने ठीक कहा, साइबर अपराध जो है पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और प्रभाव, साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
1: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
0: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
1: एक आसान जरिया।
0: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें। और याद रखिए, ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है,
1: बिल्कुल
0: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, बिल्कुल, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
1: पैसे चाहिए थे
0: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
1: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
0: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी
1: दे दी।
0: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
1: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है, बिल्कुल। वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगते हैं?
0: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
1: बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें। तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें, और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेडिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें, बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
0: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए, तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
0: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से संभा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
0: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं, तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन QR कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
1: ये बिल्कुल
0: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
1: बिल्कुल नहीं देना है,
0: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओ। और
0: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
0: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
1: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा?
0: मैसेज क्यों करेगा?
1: क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख
0: लें। आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
0: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं, कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ED से हम बोल रहे हैं, कभी CBI से, सॉरी, कभी वो CBI या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात।
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
1: नहीं है,
0: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो प्रूफ मिलेगा उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते के चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने % छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपकी बेनिफिट की नहीं होती है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
1: जल्दी करिए। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके
0: पैसे आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेगा। जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वापस आ जाए।
1: सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
0: देखिए मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें।
1: इग्नोर करना है।
0: हाँ। तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आता था ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं, कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं, तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
1: क्या बात है।
0: ये
1: सर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है, तो मैं यही बहुत सभी आप कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है ये हमारी, है ना। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइलों का अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
1: पड़ सकती है।
0: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है ओटीपी, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें, अवेयर रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे। इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
4: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
3: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में, शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद, हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: हेलो जी, कैसे हालचाल है? यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
3: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
4: हाँ हाँ,
3: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
4: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
3: जी,
4: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं,
3: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार, हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
3: जिसका
5: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका, बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
3: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
5: हाँ, तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
3: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
5: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
3: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
5: देखिए, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए, और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
3: करेक्ट करेक्ट।
5: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
3: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
5: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं, बहनें, महिलाएं, सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
3: बहुत जरूरी है।
5: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
3: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
5: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
3: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है, शायद अगर मैं कहूँ तो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर? कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
5: ये टॉपिक इतना डीप में कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
3: आई थिंक
5: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
3: क्या बात है।
5: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
3: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
5: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
3: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
3: है ना।
5: बिल्कुल।
3: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
5: देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
3: हर किसी बंदे को हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, फैमिली में चल रही है,
5: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
4: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
5: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
3: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
5: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
3: ओके,
5: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
3: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
5: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
3: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर,
5: PIL
3: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
5: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
3: लिटिगेशन के बारे में बात।
5: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
3: ठीक है,
5: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
3: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
5: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
3: करेक्ट,
5: उसको बैठ के
3: समझौता किया जाए, बेसिकली
5: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
3: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
5: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे अब हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
3: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
4: जी। हाँ,
3: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
5: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
3: हाँ, ठीक है,
5: सुनी होगी ना?
3: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
5: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
3: करेक्ट
5: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
3: राइट,
5: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
3: ठीक है,
5: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
3: ओके,
5: ठीक है,
3: अच्छा,
5: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
3: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
5: बिल्कुल,
3: तो पब्लिक
5: की बात होनी चाहिए।
3: करेक्ट,
5: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
3: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
5: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या है, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
3: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
5: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
3: पब्लिक के लिए ही,
5: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
3: राइट,
5: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिकली, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप पीआईएल ला सकते हैं।
3: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
5: हैं, बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके?
3: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका पीआईएल क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
5: मैं वही बता रहा हूँ, पीआईएल जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
3: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
5: हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम
3: आवाज उठाना,
5: उसको लेके ही हम पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
4: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
5: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
3: ठीक है,
5: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते। उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन है और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
3: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। सर, अच्छा ये बताइए पीआईएल और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
5: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं,
3: ठीक है,
5: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
3: ठीक है,
5: लेकिन पीआईएल सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता पीआईएल नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
4: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
5: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
5: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
3: करेक्ट, अरावली। हाँ,
5: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। वो उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
3: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
5: देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मैंने आपको बताया तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
3: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से ध्यान रखना
5: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म
3: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही मैं गायब हो गया तो बात अलग है तू याद करके रखियो तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
5: लिटिगेशन
3: यार पब्लिक सीखने को मिली है
5: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
3: जी जी सर
5: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं
3: ओके
5: ठीक है
3: तो देखिए गाइज अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे आपको गूगल नहीं करना
4: गूगल करके निकाल लेंगे तो
3: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है मैं समझ गया हूँ जितना दिमाग तू चलाती है इतना हमारे लिसनर भी चला लेते हैं बिल आगे बढ़ते हैं बैक टू पॉइंट
4: हाँ
3: तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे हाँ प्लीज
4: हाँ तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है
5: यस बिल्कुल कराई जा सकती है अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है
3: हाँ जी हाँ जी
5: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें
4: क्या बात है
3: अच्छा डिजिटल टाइम है सर आजकल डिजिटल जमाना है इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर
5: देखिए डिजिटल जब से युग आया डिजिटल ट्रेंड आया तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है साइबर सुरक्षा है ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं स्वतंत्रता है डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है
3: एब्सोल्युटली 100%
5: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है तो इसको लेके भी कई PILs जो है दाखिल करी थी और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए
3: तो
5: ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है
3: 100% राइट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने थैंक यू वेरी मच अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें
5: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में
3: हाँ
5: बताया ठीक
3: हाँ
5: है
3: हाँ
5: प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता
3: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
5: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही ये
3: करेक्ट करेक्ट वही ना
5: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
3: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना
5: हाँ
3: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी
5: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
3: रहती
5: है ठीक है उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं
4: चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है
5: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें है ना अमीर गरीब सब तरीके लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओस हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओस हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स

0: उसका हनन हो रहा है तो उसको लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया। और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
1: जी जी
0: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
0: अच्छा,
1: के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैं
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे
1: लेकिन
2: में पता भी नहीं।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायुनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी।
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना
2: नहीं वो हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ती रही, रोक मचाते रही
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
6: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
5: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
2: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
4: प्राची।
3: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
4: हाँ, किस चीज की बताइए?
3: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
4: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।
3: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
4: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
3: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
4: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
3: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
0: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: लाइफ में ना हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने फोन के एप्स भी चेक कर लें। आज अखिल भाई के साथ यही हो रहा है, उनके फोन में एक ऐप डाउनलोड थी, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हमें, हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। मैंने उनको बताया, वो जब से उसी में घुसे पड़े हैं, कैसा आईडी बनेगा, कैसे उस पे फॉलोवर बढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या क्या।
1: बिल बिल बिल बिल बिल बिल, मैं यही कह रहा था, एक शायरी मेरे को बहुत देर से
0: निकाली जो आपने बताई।
1: नहीं नहीं नहीं, एक शायरी बहुत देर से खटक रही है।
0: चलो ठीक है, सुना दो पहले आप
1: जो खटक रही है, कम से कम खटका
0: दे। अरे वेलकम बैक तो कर दो यार, लोग सोच रहे होंगे किस पे सुन रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है।
1: एक बार फिर से स्वागत आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
0: क्या बात है
1: जी। तो शायरी वो इस तरीके से है, दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही खास होता है,
0: वाह,
1: हर गम में एक दोस्त पास होता है,
0: वेरी नाइस,
1: जिंदगी चाहे कितने भी रंग दिखाए, सच्चा दोस्त हर मौसम में साथ होता है।
0: मैं भी आपके साथ हर मौसम में तो नहीं हूँ, लेकिन स्टूडियो में जरूर हूँ फिलहाल।
1: नहीं नहीं, आप हर मौसम में साथ में, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, देखो आपने
0: ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, एक दोस्ती ऐसी है जो हमेशा साथ रहती है।
1: ये बेमौसम तैयार
0: है भैया, आपने दोस्ती वाली बहुत अच्छी शायरी तो कर दी। इसी बात पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और आप लोग भी सुन रहे हैं तो आप भी जरूर सोचिएगा इस पे, क्या सच में दोस्ती छोटे बड़ों को देखकर होती है? कुछ लोग कहते हैं टीनेज वालों से करो, कुछ कहते हैं अपने से बड़ों से करो, कुछ कहते हैं बिल्कुल अपने वाले सेम पार्टी से करो, आपका क्या मानना है?
1: मतलब इसमें तो थिंकिंग अलग अलग है, मगर मैं मेरे अंदर से तो बात है, जहाँ आपका दिल मिले ना,
0: जहाँ
1: वाइब मैच हो, वाइब वाइब के साथ साथ
0: वाइफ नहीं गाइस, हम वाइब की बात कर रहे हैं, वाइफ की नहीं,
1: वाइब वाइब ही बोल रहा हूँ मैं, वाइब मैच हो तो दोस्ती।
0: सिंगल हूँ ना, आई एम अखंड सिंगल, बताना चाहिए। आप तो
1: अभी सिंगल है, पता नहीं कब नवम्बर दिसंबर आपका निपटेगा।
0: 12 महीने में 12 तरीके से
1: 12 तरीके से तुझको,
0: हाँ आगे शायरी करना सिखाऊंगा रे, शायरी की बात कर रहे हैं। हाँ भैया,
1: तो बस ये है कि दोस्त जहाँ पे वाइब मैच हो आपकी, जहाँ पे आपको लगे कि यार ठीक है, चलो एज में छोटा है बड़ा है, या फिर
0: वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो, ये मैटर नहीं करता। अखिल भाई सॉरी मैं ओवरलैप कर रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में जहाँ इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो, जहाँ एक दूसरे के वो सामने होना हो लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोच रहे हो, अगर वो लाइफ में ग्रो करे हमें देखे खुशी हो, सामने वाली पार्टी ग्रो करे तब भी हमें खुशी हो, या हम ग्रो करें उसे खुशी हो, वो मुझे लगता है एक अच्छी और सच्ची दोस्ती है।
1: बिल्कुल,
0: और एक दूसरे के बिना बोले समझ जाए।
1: हाँ, और एक चीज मैं सभी अपने श्रोताओं से पूछना चाहूंगा कि जैसे आनंद जी ने कहा जो बिना बोले समझ जाए, तो एक आप मुझे बताइए, आपके साथ एक रैपिड फायर सा एक क्वेश्चन है कि क्या आप समझ रहे हैं इस समय टी या कॉफी, अगर इस समय ऐसा मौसम हो तो क्या चलेगा, टी या कॉफी, प्यार या दोस्ती, सुबह जल्दी उठना या फिर देर तक सोने वाला सीन, शॉपिंग पे जाना इस समय या खाना खाना, या फिर आनंद और अखिल।
0: अच्छा, ये आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं और आपसे एक रैपिड फायर भी पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका सवाल भी हो गया है कि इस इतने अच्छे मौसम में, इस मौसम में अगर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे तो आप इसमें से क्या शॉर्टलिस्ट करोगे।
1: हाँ, है ना, मतलब आखिरी वाला जो ऑप्शन है ना वो लिमिटेड एडिशन में, ऐसे चूज नहीं होगा, बस ये है कि आनंद या अखिल में से किसे ज्यादा सुनना पसंद करोगे।
0: अरे भैया ऑफिस से बात है, दोनों को ही पसंद करेंगे, दोनों ही अच्छे हैं, अभी गाने भी आने वाले अच्छे हैं, वापस आ रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं तो आराम से चलाएं, बारिश तो देखो बंद हो भी सकती है, हो सकता है हो भी रही है क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं हमें कुछ दिख ही रहा है चार दीवारों के अलावा।
1: और आज आपके ना वाइपर की भी पोल खुल जाएगी, तो अपने वाइपर्स भी चेक हो जाएंगे कि हाँ भाई हम आज हम सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं गाड़ी के।
0: क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो कुछ गानों के बाद आप

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: शुभकामना देता हूं। आज SRCC का 100 साल पूरा हो रहा है इस बरस। किसी भी इंस्टीट्यूट को 100 साल तक चलाना और उसी रेपुटेशन के साथ चलाना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत लोग जो अलुमिनास बैठे हैं और बाकी सब लोग इसके लिए त्याग और तपस्या किया है, उन सभी लोगों को इस लेवल पर लाने के लिए मैं सभी को शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। जैसे रजत जी उल्लेख कर रहे थे, जस्टिस नारिमन, जस्टिस सिकरी, अरुण जेटली,
3: बिफोर 2016 व्हेन स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड, दैट मिशन वाज लॉन्च्ड, लेस देन 400 स्टार्टअप्स वेर देयर। टुडे मोर देन 230,000 स्टार्टअप्स आर देयर इन इंडिया। दे आर फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु टू टायर टू सिटीज। हमारे जो बच्चे हैं और उसमें स्टार्टअप में है और SRCC का भी बहुत ही स्टूडेंट ये स्टार्टअप में है। आने वाले समय में भारत को, दुनिया को रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की जरूरत है और हाई क्वालिटी सर्विसेज का भी जरूरत है। उसके लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका भी जरूरत है और उसका रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में देर इज ऑलरेडी ए सिग्निफिकेंट गैप एज फार एज स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न। इंडिया के पास इस समय, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाइएस्ट यंग पॉपुलेशन इज इन इंडिया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये यंग इंडिया को स्किल बनाने में और स्किलिंग इकोसिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में नयापन लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया और स्किल एक्सपांशन के लिए बहुत कार्यक्रम किया है। इंडिया के इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर मीन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 7.8% हुआ है। एंड जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है और भारत द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिया, दैट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज भारत में जो उपयोग होता है, 99% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसी के साथ एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। इसीलिए एजुकेशन, स्किलिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ देखना जरूरी है। इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो ग्लोबल स्किलिंग हब भी हमको बनना है और इस दिशा में हमको काम करना है। फॉर दैट वी नीड एनर्जी। मैं आपका और एक आंकड़ा बता के मेरा वाणी को विराम देता हूं। वन प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी टुक ओवर इन 2014, द टोटल जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉज 249 गीगावाट। आज टुडे 552 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ रहा है उसका वो भी एक कारण है। इसमें within that 552, 302 is through non-fossil sources एंड 165 गीगावाट इज थ्रू सोलार। मैं इस सोलार के बारे में एक सेंटेंस बताता हूं सिर्फ, और बाद में मेरे वाणी को विराम करता हूं। 2014 के बाद हमारे सोलार प्रोडक्शन और विंड प्रोडक्शन जो हुआ है, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम हुआ है और पर्यावरण के भी पॉजिटिव परिणाम हुआ है पर्यावरण के ऊपर। बट मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले भी सूर्य था, सूरज था, सूरज में तेजी भी था, लेकिन उस एसयूएन सन में प्रधानमंत्री जी ने शक्ति को देखा। ही हैज रिकॉग्नाइज द एनर्जी इन दिस सन, एसयूएन सन। एंड इससे पहले भी जो थे, एट दैट टाइम इट वॉज ओनली 2.6 गीगावाट सोलार एनर्जी एंड वी रीच टू 165 गीगावाट। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एसयूएन सन का शक्ति का रिकॉग्नाइज किया और वो शक्ति को फॉलो किया और देश को जनता को दिया। पहले वाले थे जो थे वो एसयूएन सन के पीछे पड़ा और सन स्ट्रोक हो गया, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलने वाला है। फिर एक बार मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: नमस्कार, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग एंड एनर्जाइजिंग वर्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी अराइव एट द हिस्टोरिक मोमेंट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर। 13 years back, I was the anchor. It was my privilege, and today again, an honor for me to request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, a leader par excellence and inspiration for billion dreams, to please deliver the SRCC centenary address. Adarniya Pradhan Mantri ji, aapke aashirvachan ke liye हमारा विनम्र निवेदन।
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डीयू के वीसी योगेश सिंह जी, एसआरसीसी के प्रिंसिपल सिमरित कौर जी, अजय जी, मल्लिका जी, रजत जी, एसआरसीसी के जुड़े हुए सभी साथी, फैकल्टी स्टाफ, एसआरसीसी अलमनाई और मेरे युवा साथी, मैं छठा खिलाड़ी हूं।

आजचाही अवसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये देश के शिक्षा जगत के लिए भी उतना ही अहम है। यहां एसआरसीसी का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को एसआरसीसी के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके संस्थापक सर श्रीराम जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके विजन को नमन करता हूं। साथियों, जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज की वहां एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी, और आज वही छोटा सा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसे कई पीढ़ियों को छांव भी दी है और अपनी शीतलता से समृद्ध भी किया है। आज भी दीव में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है। साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई फौजी है।

जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई और रजत जी ने बड़ी लंबी सूची बताई थी और इनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे अरुण जेटली जी यहीं पढ़े थे, और मैं कह सकता हूं कि शायद हमारी कोई मुलाकात ऐसी नहीं होती थी को एसआरसीसी की कोई घटना न सुनाते हो। और कभी कभी मैं तंग आ जाता था कि एक ही घटना बार बार सुनाते थे। कभी मेरी टीम में भाई संजीव सन्याल भी यहीं से पड़े हुए हैं, बाकी भी काफी साथी हैं यहां मेरे। और ऐसा नहीं है

0: यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, इतने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है। खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, सब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना, देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने बस स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं तो उन्होंने जोर से कहा हट हट कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के 3 नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से, आधा हवा से। और उस समय आप सब तो स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा नौजवानों से कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई फर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर इसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल था और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस क्यू दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। बावजूद इसके, जिन लोगों के लिए साल 2013 में ग्लास आधा खाली था, उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनके लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहेगा। मैं ग्लास की बात करता हूं, और कुछ खाली रहने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, 2013 में यहां एसआरसीसी में बात करते हुए मैंने P2G2 यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की थी। जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं, उनका एक स्टाइल था। जब आग लगे तभी नींद से जागो, जब सूखा पड़े तब जाकर कुआं खोदो। मैंने इसी अप्रोच को बदलने की बात कही थी और 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों, हाल में ही जनधन योजना को 12 साल पूरे हुए। आज आप फिनटेक के अलग ही दौर में जी रहे हैं, लेकिन 2013 के वो दिन भी थे जब गांव या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते थे। उस समय हमारी आबादी 125 करोड़ के पार थी, लेकिन मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबलर थे, स्टूडेंट थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहें। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गुंज टिक नहीं सकेगी। साथियों, 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा, और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड

साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। अब डिफेंस सेक्टर देखिए, पहले भारत की सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए। पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे। फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए, देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देख के आएंगे जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है। और इन संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए देश में लगातार काम हो रहा है। साथियों, अभी तो आपकी जिंदगी एसआरसीसी मोड में चल रही है। तो आप में चाय हो, या कोल्ड कॉफी पर होने वाली डिस्कशन हो, एग्जाम में लास्ट मिनट नोट्स और प्रिंट आउट के लिए भागदौड़ करना, या फिर क्रॉसरोड्स और बिजनेस फ्रंट के ऊपर भी कई मेहनत, आप सब ने यहां के हर मोमेंट को अपने जीवन की एक मेमोरी बनाया है। लेकिन इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से

समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाई यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। जो काम पहले दशकों में होता था अब वो कुछ वर्षों में ही हो रहा है। मैं पूरे फैक्ट के साथ एक और उदाहरण दूंगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, आपकी कॉलेज 1926 में शुरू हुई, इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 में चली थी ये ट्रेन। इसके बाद 2014 तक इन्हें 90 साल में सिर्फ 30% से भी कम काम हुआ। 30% से भी कम रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था। हमने सिर्फ 12 साल में रेलवे लाइनों का करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया। साथियों, भारत की नीति निर्णयों में आई है गति, दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है, जब नए बाजार खुलते हैं भारत के गुड्स और सर्विसेज के लिए टैरिफ कम होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है। साथियों,
आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा, ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं आपको फिर एक बार पुराने दिनों में ले जाना चाहता हूं। याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो पूरी सरकार हिल गई थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2008 में बैंकों का संकट आया था तो तब की सरकार ने 2000 तक उस संकट के पीछे छुपने की कोशिश की थी, हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह होने की कगार पर पहुंचा दिया गया था। 2008 में ही मुंबई में भयंकर आतंकी हमला हुआ था तो तब की सरकार पर बाहर से दबाव पड़ा और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। साथियों, पिछले 12 वर्षों में तो देश में कई सारी आपदाएं आई, कितने बड़े बड़े साइक्लोन हमने झेले हैं, लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया। पिछले 6 वर्षों में तो बहुत बड़े संकट आए, पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, फिर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद ट्रेड को, सप्लाई चेन को ही वेपनाइज करने का दौर शुरू हो गया, फिर वेस्ट एशिया का ये संकट आया। हर बार ये कहा गया कि अब तो भारत नहीं बचेगा, और जो मेरे ज्यादा ही प्रशंसक है वो ये सोचकर खुश थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी गिरा, अब तो उसे कुचल ही देंगे। लेकिन मेरे देश के लोगों के आशीर्वाद में इतना दम है, इतना दम है कि भारत का बुरा चाहने वालों की
हर हसरत दरी की दरी रह जा रही है। दोस्तों, अब 21वीं सदी में नए अवसरों की दुनिया हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि आप एम्बिशियस हैं, क्योंकि एम्बिशन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती। एम्बिशंस उस माहौल से आती हैं जो आपके बड़े सपने देखने के लिए आपको प्रेरित करती है। आज हमारा नौजवान साथी कहता है कि अपना कुछ काम करूंगा, तो स्टार्टअप करूंगा, कंपनी बनाऊंगा, यूनिकॉर्न बनाऊंगा, स्पेस और ड्रोन जैसे सेक्टर से जुड़ूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कटिंग एज एआई सॉल्यूशन बनाऊंगा, खेती में इनोवेशन करूंगा। 13 साल पहले आपके सीनियर ऐसे सपने नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आप ये सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के भारत में उन सपनों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी बन गया है। साथियों, अब समय बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने का है। अभी मैंने लाल किले से कुछ बातें कही थी, मैं आपके बीच भी उन्हें दोहराना चाहूंगा। आप संकल्प लीजिए, भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें। साथियों, ये सब संभव है। इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी है और नॉलेज भी है। साथियों, हमारी आपकी प्रेरणा एसआरसीसी का ये कॉलेज क्रेस्ट भी है। इसमें दो सुंदर प्रतीक है, एक है उगता हुआ सूरज और दूसरा है समंदर में आगे बढ़ता हुआ जहाज। सूरज जो दिशा दिखाता है और जहाज जो दिशा में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे नए रास्ते पर चलना है जिसमें सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो, उड़ान हमारी हो, आसमान हमारा हो, तेज हवाओं से टकराए वो जज्बा हमारा हो, सपना हमारा हो, संकल्प हमारा हो, आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा हो, विकसित भारत की राह में
विकसित भारत की राह में तेजी से उठता हर कदम हमारा हो। एक बार फिर इस विशेष अवसर पर एसआरसी से जुड़े सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, वंदे मातरम।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
5: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
4: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
5: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: कह दूं तुम्हें
7: हाँ
6: या चुप रहूं
7: ना,
6: दिल में मेरे आज क्या है?
7: क्या है?

0: भाई साहब, आज का मौसम देख के ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज की शाम मेरा दिल्ली रोड पे लॉन्ग ड्राइव जाने का मन कर रहा है, लेकिन साथ में कोई है नहीं, तो इसीलिए अकेले की ड्राइव करते हुए ऑफिस आ गया हूँ। और अकेला नहीं हूँ, ये कंपनी देने के लिए अखिल भाई को ले आया हूँ। हाँ जी, आप नमस्ते, गुड इवनिंग।
1: बिल्कुल नमस्ते, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। और तुमने बिल्कुल सही कहा यार, मतलब ड्राइव करने का तो मेरा ही बहुत मन कर रहा
0: है। नहीं, आपको तो आती, मुझे तो आती भी नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। आप तो जा सकते हो, कोई बात नहीं, 9 के बाद निकल जाना।
1: कोई बात नहीं, हम जो है ना तुम्हारे
0: कि यार एक काम करते हैं, पहले हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं और पकौड़े वकौड़े का कुछ इंतजाम करते हैं, मौसम इतना अच्छा है, उसके बाद बात करेंगे। और अभी मैं और अखिल भाई आए तो आपकी शाम को चटपटा मसालेदार सब कुछ यहाँ पर बना के जाएंगे, तो आप जो है हमारे साथ यूनियन रहिएगा। आज सैटरडे है, तारीख है आज कितनी पाजी, 4,
1: आज है 5 तारीख है,
0: 4 तो कल थी। मैं ना कल के ख्याल से बाहर नहीं आ रहा हूँ, कल क्या था ना जन्माष्टमी में मुझे कुछ ज्यादा ही मान सम्मान मिल गया, तो वो अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ मैं।
1: हाँ, वो मैंने तुम्हारा फोटो देखा है जो तुम जिसमें तो
0: मुझे इनवाइट किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रभु जी ने इतना अच्छा, मुझे जो है रिस्पेक्ट जो मिलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है,
1: चेहरे से दिख रहा था।
0: चलो वेल, बाय द वे हमारी बातें तो होती रहेंगी, अभी आते हैं आपका ही मचाओ। वेरी गुड इवनिंग, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो।
2: तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है, जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
4: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
4: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
3: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
4: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
4: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
3: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिले में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रूबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
8: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशे पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
9: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड। हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
10: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening.

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की

0: अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है। इतनी अच्छी बारिश में मतलब हर किसी का चाय पकौड़े खाने का मन करता है, और गाने इतने अच्छे हैं तो शाम और भी अच्छी हो रही है। एक तो वीकेंड है, सैटरडे है, लोग हैंगआउट के मूड से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर आज आप निकल रहे हैं तो अपना फोकस जरा गाड़ी पे एक्स्ट्रा रखो बॉस, क्योंकि हर जगह पे वाटर लॉगिंग है। मुरादाबाद के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है ना, वो थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, और ये अच्छी बिल्कुल नहीं है, कतई अच्छी नहीं। आप समझ सकते हैं मैं किस फॉर्म में बोल रहा हूँ भाई।
1: ये इन्हें इसलिए अच्छी लग रही है ना, ये सोचते हैं कि जो मैंने कागज वाली नाव बनाई है कम से कम वो तो तैरेगी।
0: हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, लेकिन आजकल वो नाव का शौक है नहीं, कश्ती के साथ नाव भी डूब गई है वकील भाई। सही बता रहा हूँ मैं। एनीवेज ज्यादा हम मतलब ऐसी सैड बातें नहीं करेंगे। आज 5 सितंबर है, क्यों खास है आप सभी जानते हैं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। अपने टीचर्स को एक टाइम में बहुत रोज और पेन दिए हैं मैंने, और बाद में वही पिटाई करते थे, क्लास में पकड़ के धुन देते थे।
1: मैं भले ही बताए मैं कितना भी ठुका हूँ पिटा हूँ अपने टीचर से, मगर जब भी टीचर्स डे आता था ना तो एक सुबह से ही ना चेहरे पे रहती है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, टीचर ने मारा तो है भलाई के लिए मारा होगा, मगर मैं पेन जरूर दूंगा उन्हें।
0: वेरी नाइस यार, उन टीचर ने बदले में सिर्फ डंडे दिए हैं, आज तक उन्होंने कभी पेन नहीं दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन यार मैं आज सुबह भी रेडियो पे बात कर रहा था अखिल भाई की, टीचर्स डे बड़ा स्पेशल होता है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, है ना। और लाइफ में सबसे पहले टीचर्स तो ऑफकोर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो जो हमें ज्ञान दे सकते हैं ना, वो दुनिया को याद नहीं दे सकता भाई, है ना। उसके बाद फिर हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद होती है एक विलन की एंट्री, जो सामने कुछ होता है और पीछे कुछ होता है। उससे बड़ा टीचर तो लाइफ में कोई है ही नहीं। सामने कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और बोलता है, बाद में जब हम उसकी कड़ियां छोड़ते हैं तो हमें पता लगता है भाई असली गुरु तो यही है। सिखा के जाता है कि अगली बार भरोसा मत कर लेना किसी अनजान पे। ट्रू,
1: बिल्कुल सही,
0: ऐसा सच होता है,
1: हो जाता है, ऐसा होता भी है,
0: और आजकल की जमाने में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। वेल ऐसे टीचर्स को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जो आगे और पीछे अपने दो फेस लेके घूम रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। आप जो हो वैसे ही रहो, अगर आप ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल ही रहो। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही।
0: अगर मुझे अखिल भाई की कोई बात बुरी लग रही है तो मैं स्टेटस लगा के दुनिया को क्यों दिखाऊं? अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं सामने से बोलूंगा ना भाई
1: कि हाँ भाई मेरे को ये बात बुरी लग रही है,
0: और वो मुझे लगता है कि उसका निवारण भी हो जाएगा। हम दुनिया को स्टेटस लगा रहे हैं, और जिसके लिए लगा रहे हैं हो सकता है उसी ने हमें हाइड में रखा हो, वो देख ही नहीं रहा है, दुनिया को दिखा दिया हमने, क्या ही हुआ फिर?
1: वो तुमने तो स्टेटस लगा के चिपका के छोड़ दिया यार, यार वो समझ जाएगा जिसके लिए लिखा है, मगर उसने तो तुम पे ध्यान ही नहीं दिया।
0: वही तो चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है। वेल आज टीचर्स डे है, और मैं आपको सच बताऊं बड़ा नॉस्टैल्जिया वाला मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। यू नो, हर इंसान की लाइफ में एक ना एक टीचर सबका फेवरेट होता है, करेक्ट? किसी का इंग्लिश टीचर होता है, किसी का हिंदी, किसी का मैथ का, किसी का संस्कृत का, किसी का साइंस का, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कोई किसी किसी का म्यूजिक टीचर होता है, आजकल तो योगा और ये लेक्चर तमाम सारी क्लासेस हो गए हैं, एडवांस क्लासेस आ गए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो अभी हम बात करेंगे, लौट कर आएंगे तो फेवरेट टीचर्स के बारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, बताओ हमें फटाफट, कहाँ है हमारा नंबर?
1: 9837896896 पे आप कॉल करें या मैसेज
0: कॉल मत करना यार, क्योंकि अभी हम चाय पकौड़े खाने कहीं भी जा सकते हैं, गाड़ी हमारे पास है तो हम नहीं उठा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप मैसेज ड्रॉप करो, कोई ना कोई देख ही लेगा।
1: हाँ हाँ, मैसेज कर लीजिए, समझदार को इशारे
0: काफी। एक गाना, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं।

0: लाइफ में ना हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने फोन के एप्स भी चेक कर लें। आज अखिल भाई के साथ यही हो रहा है, उनके फोन में एक ऐप डाउनलोड थी, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हमें, हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। मैंने उनको बताया, वो जब से उसी में घुसे पड़े हैं, कैसे आईडी बनेगा, कैसे उस पे फॉलोवर बढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या क्या।
1: बिल। मैं यही कह रहा था, एक शायरी मेरे को बहुत देर से
0: निकाली जो आपने बताई।
1: नहीं, एक शायरी बहुत देर से।
0: अच्छा चलो ठीक है, सुना दो पहले आप
1: जो खटक रही हो से कम खटका दे।
0: अरे वेलकम बैक तो कर दो यार, लोग सोच रहे होंगे किस पे सुन रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है।
1: एक बार फिर से स्वागत आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
0: क्या बात है
1: जी। तो शायरी वो इस तरीके से है, दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही खास होता है।
0: वाह।
1: हर गम में एक दोस्त पास होता है।
0: वेरी नाइस।
1: जिंदगी चाहे कितने भी रंग दिखाए, सच्चा दोस्त हर मौसम में साथ होगा।
0: मैं भी आपके साथ हर मौसम में तो नहीं हूँ, लेकिन स्टूडियो

0: वाइफ नहीं गाइस, हम वाइफ की बात कर रहे हैं, वाइफ की नहीं,
1: वाइब वाइब ही बोल रहा हूँ मैं, वाइफ मैं छोटे दोस्त
0: सिंगल हूँ ना, आई एम अखंड सिंगल, बताना जरूरी है कभी लोग सोच रहे हैं।
1: आप तो अभी सिंगल हैं, पता नहीं कब नवंबर दिसंबर आपका निपटेगा।
0: 12 महीने में 12 तरीके से
1: 12 तरीके से तुझको
0: आगे शायरी करना सिखाऊंगा रे, शायरी शायरी की बात कर रहे हैं। हाँ भी आप
1: तो बस ये है कि दोस्त जहाँ पे वाइब मैच हो आपकी, जहाँ पे आपको लगे कि यार ठीक है चलो एज में छोटा है बड़ा है, या फिर
0: वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो ये मैटर नहीं करता। अखिल भाई सॉरी मैं ओवरलैप कर रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में जहाँ इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो, जहाँ एक दूसरे के वो सामने होना हो लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोच रहे हो, अगर वो लाइफ में ग्रो करे हमें देख के खुशी हो, सामने वाली पार्टी ग्रो करे तब भी हमें खुशी हो, या हम ग्रो करें उसे खुशी हो, वो मुझे लगता है अच्छी और सच्ची दोस्ती है।
1: बिल्कुल,
0: एक दूसरे के बिना बोले समझ जाए।
1: हाँ, और एक चीज मैं सभी अपने श्रोताओं से पूछना चाहूंगा कि जैसे आनंद जी ने कहा जो बिना बोले समझ जाए, तो एक आप मुझे बताइए, आपके साथ एक रैपिड फायर सा एक क्वेश्चन है कि क्या आप समझ रहे हैं इस समय टी या कॉफी, अगर इस समय ऐसा मौसम हो तो क्या चलेगा, टी या कॉफी, प्यार या दोस्ती, सुबह जल्दी उठना या फिर देर तक सोने वाला सीन, शॉपिंग पे जाना इस समय या खाना खाना, या फिर आनंद और अखिल।
0: अच्छा, ये आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं और आपसे एक रैपिड फायर भी पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका सवाल भी हो गया है कि इस इतने अच्छे मौसम में, इस मौसम में अगर आपको ही चार ऑप्शंस मिलेंगे तो आप इसमें से क्या शॉर्टलिस्ट करोगे, है ना?
1: मतलब आखिरी वाला जो ऑप्शन है ना वो लिमिटेड एडिशन में, ऐसे चूज नहीं होगा, बस ये है कि आनंद या अखिल में से किसे ज्यादा सुनना पसंद करोगे।
0: अरे भैया ऑफिस से बात है, दोनों को ही पसंद करेंगे, दोनों ही अच्छे हैं, अभी गाने भी आने वाले अच्छे हैं, वापस आ रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं तो आराम से चलाएं, बारिश तो देखो बंद हो भी सकती है, हो सकता है हो भी रही है क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं हमें कुछ दिख ही रहा है चार दीवारों के अलावा।
1: और आज आपके ना वाइपर की भी पोल खुल जाएगी, तो अपने वाइपर्स भी चेक हो जाएंगे कि हाँ भाई हम आज हम सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं गाड़ी के।
0: क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, चलो कुछ गानों के बाद आते।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: वेलकम बैक है। आप सैटरडे की शाम में आनंद और अखिल को सुन रहे हैं। हमारे नाम की राशि बिल्कुल मैच करती है, राम और रावण की थी, लेकिन दोनों के कर्म अलग थे, शायद हमारी भी अलग ही है। मैं शो कर रहा हूँ, वो फोन चला रहे हैं, ये भी कर्म ही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आपसे कहना चाहते हैं आप कौन से भ्रम में जी रहे हो भाई। आज सितंबर की 5 तारीख हो गई है 2026 की, कैसे महीना निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। दिवाली आने वाली होगी और साल जाने वाला होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आनंद,
0: तुमने निकाल लिया है अपना शायर और शायरी का फंडा शुरू कर लिया।
1: आज का दिन जो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम उन लोगों को दिल से याद करने वाले जिन्होंने हमें सिर्फ किताबों के लिए नहीं, मतलब कहते हैं ना किताबों से अक्षर ही नहीं सिखाए, और बल्कि जिंदगी भी असली कैसे सीखनी है ना, कैसे जीते हैं जिंदगी वो भी सिखाया।
0: मतलब आई मीन लाइफ का एक लेसन जीना भी सिखाते हैं वो।
1: तो हाँ, टीचर्स डे में तो यार कम से कम हम ये कह ही सकते हैं उन सभी अपने गुरुओं को, सभी को जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिक्षा दी है, उन सभी को एक प्रणाम और सभी से एक कहते हैं कि
0: टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था वैसे आपसे।
1: टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? टीचर्स डे सब श्रोता बताएंगे क्यों मनाते हैं। टीचर्स डे
0: किसी का जन्म,
1: पर्सनालिटी का बर्थडे है उनका,
0: राधा कृष्ण सर्वपल्लव जी का ना।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: उनकी याद में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं,
1: उनकी याद में उनके जन्मदिन पे, क्योंकि वो एक मतलब कहते हैं ना गुरुओं में वो भी अपने उसमें श्रेष्ठ थे, और उनका जन्म दिवस के रूप में, उनकी बर्थ डेट के रूप में हमने इसे टीचर्स डे मनाया।
0: ओके बहुत बढ़िया। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले गाइज आपसे बोल भी रहे थे कि आपका हर किसी का एक टीचर फेवरेट होता है, राइट? जैसे मैंने बताया किसी का मैथ का, किसी का संस्कृत का, किसी का हिंदी का, इंग्लिश का, लेकिन एक टीचर ऐसा होता है ना, हमारी बहुत ज्यादा हवा सेंट होते हैं, हम डरते हैं, यू नो, उसका सब्जेक्ट लेने से भी डरते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डर वाला सब्जेक्ट है वो था मैथ। सीरियसली मेरे सर के पार से निकल जाती है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आई गुणा भाग ये वो, मैं इसलिए आज भी पैसे गिनने पीछे रह जाता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको।
1: तुम मत गिना करो पैसे, मुझे दे दिया।
0: हाँ बिल्कुल, मैं आपको अगली बार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए पैसे। तो अभी मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। मेरे जो मैथ के टीचर थे उनका नाम हैप्पी था, और हैप्पी सर से ना भाई बहुत डर लगता था। नाम उनका हैप्पी, आप सोच रहे हो कितनी एक्साइटमेंट वाला नाम है अखिल भाई, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगता था अभी उठा उठा के धुन डालेंगे, पटक डालेंगे भाई, लेकिन वो बहुत तगड़ा तरीके से मारते थे।
1: तो हैप्पी सर तुमसे कभी कभी पूछते थे कि बताओ आनंद कल क्या पढ़ाया?
0: बहुत बार पूछा है। और मजे की बात पता है क्या है, जिस इंसान से हम डरते हैं ना हमारे माँ बाप भी ट्यूशन भी वही लगाते हैं जानबूझ के, कि बेटे तू स्कूल में तो भाग जाएगा, ट्यूशन में नहीं भागेगा। सॉरी यार, मेरे साथ सीन ही हुआ कि मेरे पापा जी ने मेरा ट्यूशन वही लगा दिया हैप्पी सर के यहाँ, कि चल भाई तेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, स्कूल में तो तू पढ़ नहीं पाता, और ट्यूशन में तू सीख जाएगा। और मैंने कहा यार ये तो मतलब वही चीज है ना, जिससे आप जितना भागो वो उतना क्लोज आती है, तो वही था। तो फिर सर ने कहा हाँ बेटा स्कूल में तो एक नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ तू जाके दिखा, मतलब तो वहां तो मुझे बैठना ही था, तो बस मैं वही टिपन टापी करता था, अपना टाइम पास ही हो रहा था। मैंने कहा पापा लगा लो आप खुशी खुशी, पैसे आप ही क्या बर्बाद करूंगा मैं, वही हुआ।
1: नहीं तो वहाँ पे तुम ये कह सकते थे,
0: समझ में आया, मैंने मतलब 1 से लेकर 100 तक पहाड़े सीख लिए थे मैंने, मुझे इतना याद है।
1: तुम ये वहाँ पे कह सकते थे कि सर वहाँ तो स्कूल में एक नंबर चलता है, मगर मैं यहाँ पे 2 नंबर चलाता
0: हूँ। यार अखिल भाई आप भी चीनी के पहाड़ पे चढ़ा रहे हो, अखिल ऐसी महंगी हो रही है। चलिए गाइस एक काम करते हैं, गाना सुनते, लौट कर आएंगे तो अखिल भाई की भी नॉस्टैल्जिया बात सुनेंगे।
1: जाने से पहले एक शायरी।
0: अरे वाह, आपकी कौन सी टीचर से आपको डर लगा है कभी, ये बताना अभी?
1: मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मुझे तो मुरादाबाद में सही से रहना है, पता चला
0: टीचर नहीं है। सुना तो मैं आपके टीचर्स को नहीं बोलूंगा।
1: जो गिरने पर संभलना सिखाए वो हाँ। गुरु है, जो अंधेरों में उजाला दिखाए वो गुरु है, किताबों से आगे जिंदगी का ज्ञान दे जाए 6 अर्थों में वही हमारा गुरु है।
0: ओके नाइस शायरी, वेरी गुड यार।
1: तुम तो ऐसे, तुम्हें हैप्पी सर की याद ज्यादा आ रही है इसके
0: लिए। यार हैप्पी सर का चेहरा याद आ गया, और उनका वो कड़क हाथ जो पड़ जाए तो 2 दिन तक गाल सूजा रहे। इसीलिए मैं थोड़ा सा हैप्पी होके आता हूँ, अभी गाना सुन के वापस आते हैं। गाइस आप कहीं मत जाइए, आपकी कोई अच्छी मेमोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो।

0: अखिल भाई की शायरी के बाद स्वागत है आपका। ये अच्छे गाने आपने सुने और आज शनिवार है, शनिवार रात्रि मुझे नींद नहीं आती, ऐसा मैनी वरुण धवन कहता है अपने गानों में। अब सोता तो वरुण भी होगा, ऐसी बात नहीं है, कभी मौका मिला तो पूछूंगा जरूर भाई कितनी बार नींद नहीं आई सैटरडे को। खैर गाना था वो बना दिया, लेकिन अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं आपके साथ अच्छी बात है।
1: हाँ, वरुण धवन तो आजकल अपने नए फार्म हाउस में बिजी है।
0: हाँ, वो आजकल खेती बाड़ी भी कर रहे हैं वरुण जी, घास फूस लगा रहे हैं, मैंने इनके इंस्टाग्राम पे देखा था पोस्ट एंड बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं उनकी चीजें। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, सेलिब्रिटीज तो जो भी करते हैं वायरल हो जाता है। हम कब से साली कुकिंग डाल रहे हैं, हमारी तक आज तक वीडियो वायरल नहीं हो रही। कल भी मैंने इतनी अच्छी पंजीरी बनाई, वॉइस ओवर करा, अभी तक वायरल नहीं हुई।
1: तुम ना जो भी कुकिंग कर रहे हो उसमें या तो मीठा सही से नहीं डाल लो या फिर नमक।
0: नमक तो खैर नहीं डालता हूँ मैं मीठे में, आपके यहाँ डलता होगा तो बात अलग है, मेरे यहाँ पे मीठे में नमक नहीं डलता। कैसी बात कर रहे हैं भाई, निकालो इनको बाहर ऑफिस से।
1: सब्जी में कह रहा हूँ मैं तुमसे,
0: पूरी बात कहनी चाहिए थी ना। अच्छा मैं आपसे कह रहा था टीचर की बात, मेरी तो आपने सुन ली, एक नंबर भी, दो नंबर भी, चार नंबर भी। मैं आपका पूछूंगा, आपकी स्कूल टाइम में कुछ ऐसा हुआ है, आपका टीचर फेवरेट रहा हो?
1: मतलब
0: आई नो आप जिस टीचर से डर रहे हैं वो रेडियो पे नहीं सुन रहे होंगे आपको।
1: मेरे को भी ना मैथ्स में बहुत ही प्रॉब्लम थी,
0: मैथ वाला मेरे को सच में समझ नहीं आता यार।
1: तो जब भी मैथ के टीचर मुझसे कहते ना, अरे ये इतना सवाल है, इतना आसान सवाल है, तो मुझे लगता था यार अगर इतना आसान है तो आप ही करते रहो ना।
0: हाँ,
1: हमसे क्यों कह रहे हो कि ये तो बहुत इतना सवाल है, तुम एकदम बता दोगे।
0: यार मेरी लाइफ में एक इच्छा थी कि मैं अपने स्कूल में मॉनिटर बनूं, वो इच्छा पूरी तो हुई लेकिन बाद में हुई जब स्कूल से निकलने वाला था। कोई मॉनिटर नहीं बन पाया क्योंकि सर कहते थे तू इतना सीधा है, तेरे को कोई भी मॉनिटर बना के निकल लेगा, बेटा तू स्टूडेंट बन के रहे, क्लास का मॉनिटर बन।
1: एक बार बहुत अच्छा हुआ, एक बार हमारे इंग्लिश के टीचर ने एक बच्चे से कहा चलो भाई स्पीक इन इंग्लिश।
0: हाँ,
1: और जैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ ना कुछ बोलने के लिए इंग्लिश में, तो मैम ने बोल दिया सिट डाउन, उसके इंग्लिश में छुए।
0: यार ये तो मतलब बड़ी गलत बात है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया होगा बेचारे का, उठाए क्यों था यार।
1: उन्हें रियलाइज हो गया कि मैंने बच्चे से बोल तो दिया खड़ा हो गया स्पीक इन इंग्लिश, मगर ये बोलेगा हिंदी में ही।
0: ओके, हाँ वो हो जाता है कई बार बच्चों का। और यार कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे दूसरे स्कूल से दूसरे में शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है।
1: हमेशा होता क्या ना, जब आप फेवरेट बन जाते हो ना अपने टीचर के भी, तो टीचर भी कोशिश ये करता है कि जब मतलब कोशिश क्या लगता है ऐसे कि जैसे ही अगर वो क्लास में आएंगे ना तो यार इनका तो फेवरेट स्टूडेंट ये है, इनका फेवरेट स्टूडेंट
0: ये सच बात है।
1: तो वो सबसे पहले अपने उसी फेवरेट स्टूडेंट को वो उठाती थी।
0: ये भी होता है भाई, ये होता है। बट अगर कोई टीचर हमें सुन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, बट ये बहुत सही जगह पे होता है ऐसे। जैसे मान लीजिए अखिल भाई है, वो अपनी क्लास में अच्छा काम करे तो टीचर्स को तो पसंद आएंगी भाई, है ना। हर टीचर्स यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करे, अच्छा बेस्ट से बेस्ट दे और उसका भी नाम हो, है ना, क्योंकि आगे फिर उनका भी बॉस होता है प्रिंसिपल जैसे हम कहते हैं, जो पूरा कारोबार संभालते
1: हैं। तो प्रिंसिपल भी अपने फेवरेट टीचर को सबसे पहले बुलाता है केबिन में, बताओ क्या रिपोर्ट है।
0: और हमारे स्कूल में तो ये भी होता था भाई कि कल सुबह ये बच्चे को इस क्लास के बच्चे चार नाम लिखवा दो, कल आके हैं राष्ट्रगान करना। हमारी बड़ी हवा संट होती थी, हम पीछे खड़े होकर सावधान विश्राम कर सकते हैं लेकिन सामने जाके नहीं पढ़ सकते हैं।
1: अपने अपने हाउस के भी अगर आप कहते ना हाउस बॉय, हाउस हेड गर्ल, हेड बॉय जो बनते तो वो भी फेवरेट स्टूडेंट बनता है,
0: ये भी है। लेकिन मतलब वो होता है ना स्कूल टाइम पे तो आप जितनी बातें करो वो कभी है, लेकिन टीचर्स डे अपने आप में एक बहुत बेस्ट डे होता है। आज तो खाए बहुत सारे स्कूल्स की छुट्टी भी थी शायद, क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, आज छुट्टी थी बहुत सारे बच्चों की भी, मैंने सुना है टीचर्स डे।
1: आज हमारे बच्चों की तो नहीं थी छुट्टी, मगर मैंने ना आज सुबह एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ा था, मैं शेयर करना चाहूंगा
0: जरूर। सुबह का कोट रात में पढ़ रहे हो तो समझ लेना लोग एनर्जी से घर की जगह ऑफिस भाग जाएंगे रात में भी। आप बताओ,
1: गुरु और भगवान अगर दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं।
0: सच बात है, ये
1: मुझे बहुत ही अच्छी मतलब लगा ये अंदर से कि यार कितना अच्छा और कितने सरल भाषा में कितनी बड़ी बात कह दी।
0: बड़ी बात कह दी, और सच बताऊं तो ये भी एक क्रिएटिविटी है अखिल भाई, है ना, कि छोटी सी बात को भी इतना शॉर्टली और इतना कैची तरीके से बोलना। चलो फिलहाल चार मिनट हो गए हमें भी बोलते बोलते, कुछ गाने बजाते हैं फिर लौट कर आते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे स्टूडियो के बाहर।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत

0: कंपनी बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: टीचर्स की बातें हमने कर ली, टीचर्स डे पे हमने बहुत सारी बातें करी। आज इतना तो भाई साहब मैंने अपने स्कूल में चर्चा नहीं करी हुई जितना आज मैंने यहाँ बैठ के कर ली है, सच बता रहा हूँ। लेकिन बहुत मजा आया अखिल भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज आपकी बातें सुन के और मेरी बातें सुन के लोगों को हंसी जरूर आई होगी, है ना।
1: मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और जब भी ना किसी ने होमवर्क करे बिना स्कूल पहुंचा होगा, हमेशा उसके या तो पेट में दर्द रहा होगा या सर में दर्द रहा होगा कि मैम मैं तो बहुत बुखार था या कल मेरी तबीयत ज्यादा सही नहीं थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। ऐसा कितनी बार हुआ है ना तुम्हारे
0: यार? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ तो खैर ऐसा बहुत बार हुआ है, ऑफकोर्स हुआ है, मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं उन महान बच्चों को बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जो कुछ भी हो जाए हर हाल में स्कूल जाते हैं। और एक मेरे जैसे बच्चे जो ना जाने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई तो स्कूल भेज दो यार।
1: अटेंडेंस 100%।
0: मैं तो भैया भागते भागते पहुंचता था और मेरी अटेंडेंस, मेरा मैं बहुत लकी था, मेरा रोल नंबर 43 था, मुझे आज भी याद है। 11th में जब मैं था तो मैं बहुत प्राउड फील करता था कि मैं लेट आता हूँ तो मेरा रोल नंबर बच जाता है, क्योंकि जिनका एक होता है उनको सोचो उनकी क्या
1: मेरा था रोल नंबर,
0: 7 बजे एंट्री देनी है बिकॉज उनका रोल नंबर गया।
1: मेरा तो रोल नंबर बनी है,
0: मेरा तो 43 था। मैं चलो ठीक है, वो वही है ना कि मैं थोड़ा पीछे भी बैठता था तो मेरे ऊपर सर की नजरें भी कम होती थी। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है जो जितना छुपता है ना उतना ही पकड़ा जाता है।
1: मेरा एक फ्रेंड है, उसका रोल नंबर 2 था और मेरा रोल नंबर 1।
0: अरे सेम क्लासमेट?
1: हाँ सेम क्लासमेट।
0: अरे मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, रोल नंबर 1 है तो सेम क्लास में होंगे ना यार, अब वो 2 के लिए दूसरे में तो नहीं।
1: तो हमेशा मैं अगर अखिल से जैसी, और हमारे में तो प्रॉक्सी भी मतलब प्रॉक्सी इन सेंस की अगर कोई नहीं आया बचपन में कहाँ इतना रहता है।
0: वही तो
1: कि
0: है,
1: हम ये तो कॉलेज में आके मैंने सीखा कि प्रॉक्सी होता क्या है या प्रॉक्सी मार देगा भाई मेरी अगर मैं नहीं हूँ तो, क्योंकि कॉलेज में टीचर ने इतने ध्यान से देखा नहीं उस समय कि भाई कौन सा।
0: मेरे साथ भी हुआ है, बट अगर देख लिया तो इतनी फूटेगी ना भाई कि 2 दिन तक स्कूल आना भूल जाओगे, कॉलेज बता रहा हूँ मैं। बट ये बहुत वो वाली बात है, कॉन्फिडेंस के साथ तीर चलाना,
1: एकदम कॉन्फिडेंस वाला। और जैसी वो पूछे ना, जैसे अगर उन्होंने कहा रोहन,
0: टीचर हमारे सिर्फ रजिस्टर देख रही होती है, रोल नंबर 1 2 बस आपने कहा यस सर यस सर, उसे पता है हाँ वो आ गया, उसने देखा नहीं तब तो चल गए तुम। बट गलती से अगर वो
1: उसने कहा यार ये 3 दिन से नहीं आया था आज एकदम आ गया, शक्ल दिखाओ, वो शक्ल ही नहीं दिख रही है क्लास में, कहाँ रोल नंबर 4 दिख खड़ा हो।
0: ऐसा होता है यार, लेकिन बट वो ये कि स्कूल की भी अपनी बहुत सारी मेमोरीज होती है। गाइज आपने कितना सेलिब्रेट किया है स्कूल टाइम डेफिनेटली बताना। और मैं एक चीज तो ये भी बोलूंगा जाते जाते, स्कूल में और कॉलेज में दोनों में बहुत अंतर होता है यार। जो स्कूल लाइफ है ना वो स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ तो वही है कि ड्रेस पहन के भी नहीं जा सकते हो आप, मतलब यह तो ना एक हमारे जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर ड्रेस होता है, आई कार्ड, ड्रेस, जूते आपके ब्लैक होने चाहिए, बैग आपका सॉलिड होना चाहिए, कॉलर आपके ऐसे होने चाहिए,
1: बहुत चीजें जो है ना बहुत चीजें सीखी।
0: और जब कॉलेज जाते हैं हाथ में किताबें लेके चले जाओ, कोई ड्रेस ही नहीं है, कुछ भी पहन के जा रहे हैं, मतलब कुछ भी,
1: उसका एक अलग स्वाद है।
0: हाँ स्वाद है, लेकिन जो मजे स्कूल टाइम में कॉलेज में नहीं है।
1: कॉलेज जब स्कूल बैग, मेरे को आज भी याद है, मेरा छोटा वाला बैग होता था जिसमें वो प्रेस करो चिटकनी लगी होती है
0: मेरे पास,
1: तो वो चिटकनी वाले बैग
0: होते थे, दो ऊपर डिजाइन आते थे कॉपी रखने के लिए,
1: मेरी खराब हो गई
0: हाँ।
1: तो वो बैग ओवरलोड हो गया तो एक ही चिटकनी के सहारे पूरा बैग मेरा टाइट,
0: मेरा भी होता
1: और वो किताब, मुझे लगता था कोई किताब ना निकाल ले उसमें से कुछ,
0: गिर ना जाए। और मेरे पास भी वो बैग था, तो मेरे पास ना जो बैग था वो 2 चिटकनी वाला था, उसमें दोनों 2 क्लिप होते थे, उसमें एक तरफ कॉपी रखता था, एक तरफ अपना बॉक्स रखता था वो पेंसिल रबड़ वाले, है ना। और उसके अंदर और भी चैन आते थे किताबें रखने वाले, किसी का लंबी का टाइप में किताब रखते थे, कोई ऐसे इस वाली शेप में अलग अलग, है ना। लेकिन यार कुल मिला के वो वाले बैग तो अब देखने को नहीं मिलते।
1: एक इंसिडेंट बहुत अच्छा हुआ था, एक दोस्त मतलब एक मेरा क्लासमेट उस समय, वो गुस्से में उस दिन उसके बैग में पानी गिर गया, कुछ हुआ था इंसिडेंट, वो जो सब्जी नहीं होती जैसे सब्जी लेके आते हैं वो वाला झोला, वो झोले में किताब लेके आ गया भाई। उस दिन ऐसा लगा अब तो स्कूल जैसे गांव में जाते थे ना झोला
0: लेके जाते हैं यार। मैं तो कई बार ना जब मेरे पास मतलब पैसा नहीं है
1: झोले में लेके
0: मजे मजे में पन्निया ले जाता था, कई बार होते ना अपनी किताबों को पन्नी में रखा लेके चल दिए स्कूल, बट बहुत मार पड़ती थी कि भाई बैग कहाँ है।
1: दिन पूरी क्लास में जो भी टीचर आए सबसे पहले तो हमारी क्लास का मॉनिटर खड़ो गया, बोला सर आज राहुल जो है ना झोले में किताबें लेके आया है, सब हंसे। मतलब स्टार्ट जो भी पीरियड था उस पीरियड में 10 से 15 मिनट तो वही उसी टॉपिक में निकल गया कि झोले में क्यों लेगा। वो बेचारा बार बार बता रहा है कि सर मैं गुस्से में था, मैं झोले में ले आया, मुझे स्कूल आना था पढ़ाई के लिए, मेरे बैग में खराब, पापा सही नहीं करा के दे रहे थे ये वो। भाई हर पीरियड में 10 मिनट हमारे ऐसे निकल जाते थे, और जान बूझ के भी हम लोग उसके झोलों को लेते थे जिससे जल्दी जल्दी पीरियड खत्म हो और अपना काम
0: वो निकले अपना बाहर। अच्छा कुछ टीचर तो इतने महान थे हमारे स्कूल टाइम में कि उनको भी पता है कि बच्चे तो पढ़ते नहीं, तो वो भी अपना बाहर टहलने लग जाते थे कि करो तुम भी मौज। फिर जैसे उन्हें लगा प्रिंसिपल आ रहा है तो ए चुप क्या कर रहे हैं, कॉपी निकालो वो वाला। तो टीचर भी थोड़ा थोड़ा फन करते हैं नो डाउट, उनको भी थोड़ा सा चाहिए होता है कि हाँ ठीक है ये स्टूडेंट पढ़ने लायक नहीं है, बहुत हुई तो उनके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं।
1: तो आज जो है ना मैं तो कहूंगा अपने एफएम टीम की तरफ से और आनंद और अखिल की तरफ से कि थैंक यू टीचर्स, और धन्यवाद आपका हमें पढ़ाने के लिए, धन्यवाद हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, धन्यवाद हमें डांटने के लिए, और धन्यवाद हमारी छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देने के लिए। तो एक चलने से पहले मतलब एक अंतिम शायरी आनंद
0: मैं सुन रहा हूँ।
1: हाँ, मैं तुम इधर उधर हो गए ना, जैसे तुम मुझे मोबाइल का बता रहे थे, खुद मोबाइल में खो
0: जाते हो। मैं जाते जाते क्या साइनिंग ऑफ करूँ कैसे, चलो आप बोलो।
1: चलो मैं एक शायरी सुनाता हूँ, फिर तुम भी सुनाना है। अक्षर अक्षर ज्ञान दिया, जीने का सही सम्मान दिया, जब भी हमने राह में ठोकर खाई, गुरु ने हमें फिर से उड़ान दिया।
0: वाह वाह,
1: हैप्पी टीचर्स डे एक बार फिर से सभी टीचर्स के लिए, सभी शिक्षक जहाँ जहाँ किसी भी रूप में, और कहते हैं ना सभी मुरादाबाद में जितने भी टीचर्स हैं सारे।
0: सही बात है, और हम रेडियो जॉकी भी टीचर्स होते हैं, तो हमें भी आप थैंक यू बोल सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, गाड़ी कब कैसे चलानी है, सीट बेल्ट नहीं लगानी, भले हम खुद नहीं लगाते वो बात अलग है, हम आपको कहते हैं हेलमेट लगाओ, कभी कभी हम खुद नहीं लगाते वो बात अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे जोक सपाट हम लोग बिल्कुल लगाते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए तो हम उसको सही भी करते हैं, क्योंकि यार कोई भी चीज हमें खुद को नहीं करनी है और हम दूसरों को ज्ञान दे रहे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। करेक्ट, तो बोलने से पहले फॉलो भी करना जरूरी है, और अभी के लिए बाय बाय। बहुत लंबा लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया है, 6 मिनट का ऐसा लग रहा है भाई। तो अपन अभी जाते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको इसी स्टेशन पे, और कल संडे देर तक सोना है तो अच्छी बात है, सो जाओ। अतुल भाई आप कुछ कहोगे?
1: मैं तो ये कहूंगा साहब, बस रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, गुड नाइट।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।